0: ਜਿਹੜੇ ਨੋ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਨੋ ਲੋਸ ਤੇ ਉਹ ਕਰਦੇ ਆ ਬੇਸਿਕਲੀ, ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਇੱਕ ਆਈਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਿਕ ਕੀਤਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਇੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸੇ ਬੇਸ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੁਣ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੈਟਲ ਏ ਟੋਰੋਂਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ, ਬਟ ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਉਹ ਲੋਕਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਵੀ ਮਾਰਕੀਟ ਏ, ਪਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ। ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਮਿਲਦੀ ਏ 13%, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵੀ 13% ਡਿਵੈਲਪਿੰਗ ਨੇਸ਼ਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਤੇ 13% ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੈਪ ਏ ਉਹ ਕਵਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ ਇੰਡੀਆ ਜੇ ਕੰਪੀਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ। ਸੋ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇੰਡੀਅਨ ਜਿਹੜਾ ਕੱਪੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਨਹੀਂ ਆ ਪਾਉਂਦਾ ਅਤੇ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਇਆ ਵਾਈ ਨੋਟ ਆਪਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਈਏ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪੀਟ ਕਰ ਸਕਦਾ,
1: ਦੇਸ਼ ਕੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਕੀ ਰੀੜ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇਸਕੀ ਬਾਂਗਲਾਦੇਸ਼ ਕੀ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇਸ਼ ਕੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਕੀ ਰੀੜ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇਸਕੀ ਰਫਤਾਰ ਧੀਮੀ ਪੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਈਰਾਨ ਯੁੱਧ ਕੇ ਬਾਅਦ ਬਿਜਲੀ ਔਰ ਤੇਲ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਇਸਸੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਔਰ ਸਮੇਂ ਪਰ ਨਿਰਯਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੁਆ ਹੈ ਕਿ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਮਜ਼ਦੂਰੋਂ ਕੀ ਛਟਨੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਆ ਇਸ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਸੇ ਉਭਰਨੇ ਕਾ ਕੋਈ ਉਪਾਅ ਹੈ? ਆਜ ਹਮ ਜਾਣੇਂਗੇ कि बांग्लादेश के साथ ही दक्षिण एशिया के बड़े कपड़ा उत्पादकों जैसे भारत, पाकिस्तान और वियतनाम का क्या हाल है और क्या बांग्लादेश में मौजूद चुनौतियां भारत के कपड़ा कारोबारियों को थोड़ी बढ़त बनाने का मौका दे सकती हैं। इस टेक्सटाइल फैक्ट्री के मैनेजर प्रोडक्शन यूनिट का दौरा कर रहे हैं। फिलहाल मशीनें चल रही हैं लेकिन देखिए कब तक बिजली कटौती बहुत बढ़ गई है, इससे मशीनों को चलाए रखना ज्यादा से ज्यादा मुश्किल होता जा रहा है। मैनेजर के मुताबिक उत्पादन पहले ही गिर चुका है। मैनेजरों की मीटिंग के दौरान भी माहौल तनावपूर्ण है, उतरे चेहरे देखे जा सकते हैं।
2: हाँ, साफ है कि तेल संकट से हमारी उत्पादन क्षमता में गिरावट आएगी, क्योंकि जब बिजली ही नहीं होगी, एनर्जी नहीं होगी तो काम भी धीमा होगा। ये तो हम कई बार देख चुके हैं।
1: एनर्जी सप्लाई अकेला संकट नहीं है। ईरान युद्ध के शुरू होने के बाद से यातायात और माल ढुलाई का खर्च भी लगभग दोगुना हो चुका है। नतीजा ये हुआ है कि कई कपड़ा उत्पादक उत्पादन लक्ष्य पूरे नहीं कर पा रहे और अपने माल की सप्लाई नहीं कर पा रहे। बांग्लादेश के प्रमुख टेक्सटाइल एसोसिएशन के अध्यक्ष खुद भी एक फैक्ट्री मालिक हैं। वो मानते हैं कि इससे एक दुष्चक्र बन रहा है।
3: जब हम खरीदारों को सही डेट पर डिलीवरी नहीं कर पाते तो उनके साथ मोल भाव करना पड़ता है। कभी कभी हमें माल को प्लेन से भेजने पर मजबूर होना पड़ता है और ऐसा करने से हमारे माल की 50-60% कीमत इसी में चली जाती है।
1: जानकार कहते हैं कि इस संकट का बुरा असर पूरे देश पर होगा।
4: So about 4 million people are engaged.
5: करीब 40 लाख लोग इस कारोबार से जुड़े हैं। इस पर आने वाली चुनौतियों और दबावों का असर अर्थव्यवस्था के कई हिस्सों पर होगा।
4: Overarching impact on various sectors of the economy.
1: एक के बाद एक बैठकें जारी हैं। कपड़ा कंपनियों को कोविड के समय से ही चुनौतियों की आदत पड़ चुकी है। तब भी उत्पादन ठप पड़ गया था लेकिन इस बार हालात और भी खराब हैं। प्रेसिडेंट भी ऐसा ही मानते हैं।
3: रूस यूक्रेन युद्ध, उससे पहले कोविड, उसके बाद अमेरिकी टैरिफ और इसके बाद ईरान और अमेरिका युद्ध। अंतर्राष्ट्रीय बाजार तो स्थिर ही नहीं हो रहा, अर्थव्यवस्था उठापटक वाले दौर में ही चल रही है। नतीजा ये हुआ है कि खरीदार भी सतर्क हैं। अनिश्चितता के बीच उन्होंने आयात घटाया है क्योंकि उनकी बिक्री भी घट गई है।
1: कोविड के दौरान जो गिरावटें आईं, उसमें रिकवरी भी काफी तेज हुई लेकिन ये ऊर्जा संकट उतनी ही तेजी से खत्म हो जाएगा, इसे लेकर जानकार संशय में हैं। कोई संदेह नहीं कि बांग्लादेश में कपड़ा उत्पादकों की स्थिति काफी खराब है। ऐसे में क्या अन्य कपड़ा उत्पादक देशों के लिए ये इस बाजार में बढ़त बनाने का मौका हो सकता है?

0: चीन दुनिया का सबसे बड़ा कपड़ा निर्यातक है, जो 165 अरब डॉलर के कपड़े निर्यात करता है। फिर 38 अरब डॉलर कीमत के साथ बांग्लादेश और 34 अरब डॉलर के साथ वियतनाम है। भारतीय कपड़ा उद्योग भी तेजी से तरक्की कर रहा है और ईरान युद्ध के दौर में उसके पास एक खास बढ़त भी है।
1: For example, India,
2: मसलन भारत इस संकट के बीच तेल तक पहुंच के मामले में अपेक्षाकृत अच्छी स्थिति में है। उनके पास रिजर्व है, उनकी अन्य स्रोतों तक पहुंच भी है। मैं कहूंगी कि बांग्लादेश के मुकाबले ये एक तरह का फायदा है।
1: Compared to Bangladesh,
0: 10,000 कर्मचारियों वाली कंपनी टीम ग्रुप भारत और पाकिस्तान से मिलने वाली इस टक्कर से बखूबी वाकिफ है और हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठी है। कंपनी के मैनेजमेंट ने संकट से पहले ही फैसला कर लिया था कि वे सिर्फ तेल पर निर्भर नहीं रहेंगे। उनके बेसमेंट में इमरजेंसी में काम आने वाले डीजल जनरेटर तो हैं, लेकिन अभी तक इनका इस्तेमाल नहीं हुआ है, बल्कि वे लोग छतों पर लगे सोलर पैनल से काम लेते हैं। ये निवेश अब काम आ रहा है। इस कंपनी की तरह अन्य कंपनियों ने अभी तक तेल और गैस से मुक्त होने के लिए रिन्यूएबल एनर्जी में निवेश नहीं किया है और अब चुनौती के बीच ये और ज्यादा कठिन होता जा रहा है।
1: Some support to the manufacturers.
2: उत्पादकों के लिए ऊर्जा की कीमतें कम करके उत्पादन घटाने में उनकी थोड़ी मदद की जा सकती है। जाहिर है इसका ये मतलब भी होगा कि सरकार पर सब्सिडी का ज्यादा बोझ आएगा, लेकिन मुझे लगता है कि उत्पादन और निर्यात को सुचारू बनाने के लिए सरकार को भी इस समय कुछ मदद देने के बारे में सोचना चाहिए।
0: कुछ लोग मानते हैं कि मदद के लिए देर हो चुकी है।
3: कई फैक्ट्रियां पहले ही बंद हो चुकी हैं, लेकिन अगर हमारी सरकार ने थोड़ी रियायत दिखाई और हमारे संगठन थोड़े और सक्रिय हुए तो हम फिर से खड़े हो सकते हैं। अगर ऐसा नहीं हुआ तो भले ही हम एक साल काम चला लें, लेकिन उससे ज्यादा नहीं चलेंगे।
0: ये ऊर्जा संकट बांग्लादेश के कपड़ा उद्योग का बड़ा इम्तिहान है। देखना है कि ये कंपनियां इससे कितनी मजबूती से निपट पाती हैं। निसंदेह बांग्लादेश के कपड़ा उद्योग पर बड़ा दबाव है। फिलीपींस पर भी ईरान युद्ध से उपजे ऊर्जा संकट की बहुत ज्यादा मार पड़ी है। भारत और पाकिस्तान जैसे देश फिर भी इससे दूसरों के मुकाबले ज्यादा बेहतर तरीके से निपट सके हैं। दक्षिण एशिया के करोड़ों लोगों का पेट भरने वाला ये उद्योग अंततः क्या शक्ल लेगा, ये इस पर भी निर्भर करेगा कि ये ऊर्जा संकट कितना लंबा चलता है। ऐसे में सभी इसके जल्द से जल्द अंत की उम्मीद कर रहे हैं। आपने भारत के कपड़ा उद्योग पर इसका कोई खास असर देखा हो तो हमें कमेंट करके बताइएगा।
4: हम जी सो डेफिनेटली क्योंकि नुकसान जड़ा वो होया ही है, ऑलरेडी हो रहा ते लोकी जड़े ने सारिया गल्लां वतन लैके थोड़े परेशानी दे हालात च वी ने, क्योंकि दुखी है लोकी, क्योंकि इन्ने महंगे महंगे जड़े ने सूट बच्चा ने, मैं सुनने च आया भी 300-300 डॉलर दे जड़े ने बच्चा ने सूट भी दिते जा रहे ने, सिर्फ कुछ एक स्पेशल चीजा वास्ते, विच इज लॉट ऑफ मनी हुण अज दी तरीक दे विच ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਲਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 30-40-50 ਤੱਕ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਚਲੋ ਇਹ ਜੇ 50 ਡਾਲਰ ਵੀ ਲਈਏ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ 15,000 ਇੰਡੀਅਨ ਕਰੰਸੀ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਬਟ ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 68-70 ਦੇ ਲਾਗੇ ਇਹ ਪੈਸਾ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਤੇ ਇੰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਾਫੀ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਕੱਪੜੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਵਪਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕਮਰਸ਼ਲ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਬੋਰਨ ਬਿਲੀਨੀਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ 30 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ, ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਗੂਗਲ ਤੋਂ ਮੈਸੇਜ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਵੀ 30 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਡਿਜੀਟਲ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਬੋਰਨ ਬਿਲੀਨੀਅਰ। ਸੋ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੈਸੇ ਦੋਸਤ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲੋਕਲ ਦੇਖਿਆ, ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਸਬਰੰਗ ਰੇਡੀਓ 94.7
5: ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਿਰਮ ਜੋਸ਼ੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਤੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਤੇ ਵੈਲ ਕੇਅਰਡ ਫੀਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ

0: हिंदी उर्दू ते पंजाबी विच भी गलबात कर सकते हो ताकि तुसी घर वर्गा एहसास महसूस करो।
1: नवे पेशेंट्स नु एक्सेप्ट हो रहे ने, आज ही अपने परिवार लई फैमिली डॉक्टर सिक्योर करो।
0: कॉल करो 587-360-6890 लाइफलाइन मेडिकल क्लिनिक, वॉक इन सवेरे 9 बजे तो शाम 6 बजे तक।
1: सानू मिलो किंग्स व्यू बुलेवर्ड ते या कॉल करो 587-360-6890।
0: थोड़े परिवार दी सेहत साडी जिम्मेदारी।
2: हेलो नमस्ते सत श्री अकाल आदाब।

प्रोसैसिंग समा लग रहा सी। पाकिस्तान तो आने वाली अर्जियां का जिक्र किया जाए तो सिर्फ 70 दिन के अंदर निपटारा किया जा रहा है। वर्क परमिट के मामले च भारत तो दाखल अर्जियां का प्रोसैसिंग समा 10 हफ्ते तो घट के 9 हफ्ते रह गया है, पर पाकिस्तान के मामले च हां जां ना दसण लई सिर्फ 6 हफ्ते लै जा रहे ने। कैनेडा च मौजूद लोगों वालों दाखल वर्क परमिट एप्लीकेशन 195 दिन के प्रोसैस की जा रही ने, जिन्हों का निपटारा मई के अंत तक 201 दिन च किया जा रहा है। स्टडी वीजा के मामले च भारत तो आ रही अर्जियां का निपटारा 5 हफ्ते च हो रहा है, पर पाकिस्तान के मामले च प्रोसैसिंग समा सिर्फ 4 हफ्ते रह गया है, जो किसी वेले 12 हफ्ते चल रहा है। कैनेडा च मौजूदगी दौरान स्टडी वीजा अर्जियां की प्रोसैसिंग वास्ते 6 हफ्ते का समा लग रहा है। विजिटर वीजा लई भारत तो दाखल अर्जियां का निपटारा 28 दिन च हो रहा है, जबकि पाकिस्तान के मामले च 47 दिन लग रहे हैं। कैनेडा च मौजूदगी दौरान दाखल विजिटर वीजा अर्जियां 28 दिन च प्रोसैस की जा रही ने। दस दिए कि नवा PR कार्ड हुण 50 दिन के अंदर मिल रहा है, जिस वास्ते मार्च च 60 दिन तो वध उड़ीक करनी पै रही थी। इसे तरह स्पाउस वीजा लई उड़ीक समा 15 महीने चल रहा है, स्पाउस वीजा अर्जियां का बैकलॉग 47,000 तो उत्ते दस्या गया है। एक ताज़ा ग्लोबल सूची अनुसार लगभग सारियां कनेडियन यूनिवर्सिटीज़ की रैंकिंग हेठां डिगी है। यह गिरावट बेहतर फंडिंग वाले अंतरराष्ट्रीय मुकाबलेबाजा वालों मिल रही सख्त टक्कर नूं दर्शाउंदी है। सेंटर फॉर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स वालों जारी की गई सूची मुताबक कैनेडा दी 38 रैंकिंग प्राप्त यूनिवर्सिटियां चों 37 पिछले साल के मुकाबले पछड़ गई ने, जबकि सिर्फ एक अपनी स्थिति बचाने च कामयाब रही। यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो पिछले साल की तरह 23वें स्थान पर रह के देश की सर्वोत्तम संस्था बनी हुई है। मैकगिल यूनिवर्सिटी एक दर्जा खिसक के 28वें और यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया 49वें स्थान पर आ गई है। यूनिवर्सिटी ऑफ अल्बर्टा 82वें और यूनिवर्सिटी ऑफ मॉन्ट्रियल 126वें स्थान पर रही। सेंटर फॉर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स के प्रेजिडेंट डॉक्टर नदीम महसेन ने कहा है कि कनेडियन यूनिवर्सिटियां का यह पतन सालों तो मिल रही नाकाफी फंडिंग और विज्ञान से सिक्ख्या जनतक हित वजो घट महत्व देने का नतीजा है। इतों दस्थाव उच्च गुणवत्ता वाली सिक्ख्या देन प्रतिभा नूं आकर्षित करन अते वड्डे पद्धर ते खोज कार्ज करन च संघर्ष कर रही ने। उन्हां चेतावनी दित्ती कि यह केवल एक अकादमिक समस्या नहीं बल्कि राष्ट्रीय चिंता है, जो देश के लंबे समय के भविख अते नवीनता नूं प्रभावित करेगी। इस रैंकिंग च दुनिया भर दियां 21,000 तों वध यूनिवर्सिटीज का मुलांकण सिक्ख्या की गुणवत्ता, रुजगार योग्यता, फैकल्टी दियां प्राप्तियां अते खोज के आधार ते कीता गया है। अमरीका की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी लगातार 15वें साल पहले स्थान पर रही। इस तो बाद MIT अते स्टैनफोर्ड का नंबर आता है। ब्रिटेन की कैम्ब्रिज अते ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटियां क्रमवार चौथे ते पंजवें स्थान पर रही। चीनी यूनिवर्सिटियां ने बेमिसाल तरक्की की है, लगभग 98% चीनी संस्थावां दी रैंकिंग सुधरी है। इस विच सिंघुआ यूनिवर्सिटी 36वें स्थान पर है। ग्लोबल 2000 की सूची च हुण चीन दियां सब तो वध 360 संस्थावां शामिल ने। दूजे पासे फंडां दे दबाव अते वधदे ग्लोबल मुकाबले कारण यूरोप ते जापान दियां कई प्रमुख संस्थावां दी रैंकिंग च वी गिरावट दर्ज कीती गई है। इह रैंकिंग किसे सर्वेखण दी बजाए 81 मिलियन ठोस नतीजा आधारित डेटा पॉइंट्स दे उत्ते आधारित है। कैनेडा दे सूबे अल्बर्टा नूं एक वखरा देश बनाउण दी मंग संबंधी 19 अक्तूबर नूं होण वाले रेफरेंडम तों पहलां नागरिकता ते पासपोर्ट दा मुद्दा काफी पख गया है। वक्खवादी नेतावां ते संगठनां दा दावा है कि कैनेडा तों वक्ख होण तों बाद वी इत्थों दे लोकां कोल कनेडियन पासपोर्ट रहेगा, पर संविधानक माहिरां ने इस दावे नूं पूरी तरह नकार दिता। अल्बर्टा नूं वखरा देश बनाउण दी वकालत करन वाले प्रमुख ग्रुप अल्बर्टा प्रोस्पैरिटी प्रोजैक्ट ने अपनी वैबसाइट ते दावा कीता है कि जदों तक कानून नहीं बदल दे आजाद अल्बर्टा दे नागरिकां कोल कनेडियन नागरिकता ते पासपोर्ट दोवें मौजूद रहणगे। उन्हां दा कहना है कि अल्बर्टा दे लोकां कोल दोहरी नागरिकता वांग पहलां नालों वध विकल्प होणगे। यूनिवर्सिटी ऑफ अल्बर्टा दे कानून विभाग दे एसोसिएट प्रोफेसर जेराड कैनेडी अनुसार संभावित रिपब्लिक ऑफ अल्बर्टा दे वसनीकां नूं कनेडियन सरकार दी मंजूरी तों बिना कैनेडा दी नागरिकता रखण दा कोई कानूनी अधिकार नहीं होवेगा। ओटवा यूनिवर्सिटी दे प्रोफेसर अरोल मेंडेस ने भी चेतावनी दित्ती है कि नागरिकता दा मुद्दा इन्ना सौखा नहीं है ते रेफरेंडम दौरान वक्खवादियां वालों संविधानक तत्थां नूं तोड़ मरोड़ के पेश कीता जा रहा है। साल 2000 च बने फैडरल कलैरिटी एक्ट मुताबक जेकर कोई सूबा स्पष्ट बहुमत नाल वक्ख होण दे पक्ष च वोट पाउंदा है तां उह वक्ख होण दीआं शर्तां ते गलबात कर सकदा है, पर इस कानून दी प्रस्तावना च साफ लिखा है कि देश तों वक्ख होण दी सूरत च कनेडियन नागरिकता ते होर अधिकार खत्म हो सकदे ने। माहिरां दा मनणा है कि भावें कैनेडा लई

0: Remember last weekend? For many of us, it sounded like this.
1: Wanna dance?
2: Sure.
0: But for some, it sounded this way.
2: Drinking and driving was the cause of another fatal accident this weekend.
3: Would you step out of the car, please, sir?
0: Hey, some were weekends were made to remember, but not for all the wrong reasons. Please, drink responsibly. A message from the Brewers of Canada.
4: Punjab to prasidh patrakar Jitinder Pannu ji nu somvar to shukrawar Radio Sursangam 94.7 FM te suno. Hafte de 20 ghante Radio Sursangam. RadioSursangam.ca phone 403-585-0910 Radio Sursangam.
5: The following program speaks to the East Indian community. Uniting the world for your listening pleasure at Fairchild Radio, the multicultural spirit of Calgary, CHKF 94.7 FM.
6: Subang Radio 94.7 FM. The sare listeners ek vari phir to swagat hai ji ajj de is program jehda ki tusi Monday, Tuesday, Thursday, Friday sham nu 7 to 8 te Sunday 1 baje to leke 5 baje tak sunde ho. Kyunki ajj da program jehda hai eh ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੀ ਲਿਆ ਜਾਏ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਪੀ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੀਏ. ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਪੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਅਤੇ ਵਾਈ ਨੋਟ. ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਇੱਕ ਗੱਲਬਾਤ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੈਗੂਲਰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੁਛ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਖਾਸ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦੀਆਂ.
7: बारिश का पानी उसके लिए तो कहते हैं कि ये तो अमृत है, अमृत पीने से तो आदमी की उम्र लंबी हो जाती है. लेकिन एक मिनट रुकिए, थोड़ा सा साइंस का जिक्र करेंगे, साइंस की स्टडीज का जिक्र करेंगे और देखेंगे कि बारिश का पानी जिसको अमृत कहा गया है, जिसको पानी का प्योरेस्ट फॉर्म कहा जाता है, जिसके लिए कहते हैं कि देखो अपन ने भी बचपन में किया होगा कभी ना कभी, ऐसे मुंह खोल के और बारिश की बूंदें जो है सीधी मुंह के अंदर जा रही है, आज भी ये पानी पीने के लिए सेफ है? जहां पूरी धरती पॉल्यूट हो रखी है, जहां एटमॉस्फेयर में हम बात करते हैं PM 2.5, PM 10, माइक्रोप्लास्टिक्स हर जगह घुस गए हैं, तो क्या बारिश का पानी इन चीजों से बच पाया है? क्या आज भी बारिश का पानी अमृत है? तो इसको समझने के लिए अपने को थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि पानी जब बरसता है तो बारिश जो है वो बनती कैसे है. तो हम सब जानते हैं कि बारिश का जो पानी होता है वो रिजल्ट होता है कि ओशन या बड़ा बड़ा जो पानी के सोर्सेस है वहां पे इवेपोरेशन होता है, यानी जब सूरज तेज तपता है और अपनी सोलर लाइट यहां भेजता है तो उसकी वजह से इवेपोरेशन होता है. इवेपोरेशन का मतलब वाष्पीकरण होता है. वाष्पीकरण होने के बाद में बादल बनते हैं, कंडेंसेशन होता है, और यही बादल जो है बाद में बारिश की फॉर्म में बरसते हैं. अब यहां पर इंपॉर्टेंट चीज ये आती है कि जब पानी का वाष्पीकरण होता है या इवेपोरेशन होता है तो उस टाइम पे सिर्फ और सिर्फ पानी ही ऊपर जाता है. बिकॉज हमने ये पढ़ रखा है, नहीं पढ़ रखा तो हम ये जानते हैं, नहीं जानते तो अब ये सीख लेंगे कि डिस्टिलेशन जिस चीज का भी हो गया, आसवन जिसको कहते हैं, वो जिस चीज का भी हो गया वो चीज शुद्ध हो जाती है. आपने बचपन में भी देखा होगा कि एक एक्सपेरिमेंट किया जाता है कि एक फ्लास्क लो, उस फ्लास्क में नमकीन पानी लो, ऐसा पानी जिसमें पानी और नमक दोनों है, और उस फ्लास्क को एक ऐसे पाइप जोड़ देते थे और यहाँ पे कंडेंसेशन असेंबली लगाते थे, संधारित्र लगाते थे जिसमें कोल्ड वाटर जैकेट होती थी, और यहाँ पे प्योर वाटर इकट्ठा हो जाता था, यहाँ नमक बच जाता था. तो जैसे यहाँ पे पानी भाप बन के उड़ रहा है, बिल्कुल ऐसे ओशन से भी पानी भाप बन के उड़ता है.

ऊपर जाता है, जाने के बाद जब तक कंडेंसेशन होता है तब तक पानी अपनी प्योरेस्ट फॉर्म में होता है। तो इसका मतलब बादल के अंदर आज भी मैं ये कह सकता हूं कि पानी जो है वो प्योर स्टेट में है। तो फिर दिक्कत कहां आ रही है, गड़बड़ कहां आ रही है? अब गड़बड़ आती है हवा। अब ये बादल भले इक्वेटर से आ रहे हो, अब ये बादल भले अंटार्कटिका से बन के आ रहे हो, या बादल भले ऑस्ट्रेलिया से बन के आ रहे हो, जैसे ये बादल हमारे एटमॉस्फेयर में ट्रेवल करते हुए आते हैं और जब ये बारिश में बदलते हैं तो बादलों के और हमारे बीच में है लोअर एटमॉस्फेयर की एयर। और लोअर एटमॉस्फेयर की एयर की बात करते ही मैं कहूंगा याद करो दिल्ली की कंडीशन, याद करो कोई भी ऐसी सिटी की कंडीशन जहां पे बहुत ज्यादा पॉल्यूशन हो रखा है। तो यहाँ पे बादल एकदम अच्छा पानी लेकर के आ गया है। बादल वो वाला पानी लेके आया जो डिस्टिलेशन से बना है, यानी कि इसके अंदर अभी तक प्योर वाटर था। अब बादल के और हमारे बीच में हवा है। अब जो हवा है हमारे और बादल के बीच में, उस हवा में है डस्ट यानी कि धूल, उस हवा में है स्मोक यानी कि धुआं। उसी हवा के अंदर फैक्ट्रियां जो है वो अपना एग्जॉस्ट छोड़ रही हैं। फैक्ट्रियों के एग्जॉस्ट के अंदर कोलॉइड्स होते हैं, फैक्ट्रियों के एग्जॉस्ट के अंदर कार्बन पार्टिकल्स होते हैं, फैक्ट्रियों के एग्जॉस्ट के अंदर केमिकल्स होते हैं, फैक्ट्री के जो एग्जॉस्ट है उसके अंदर पीएम पॉल्यूशन होता है, पार्टिकुलेट मैटर, छोटे छोटे छोटे छोटे कण होते हैं, ये सब आ रहा है। फिर इसी हवा के अंदर हम व्हीकल लेकर के जा रहे हैं तो हमारे व्हीकल से जो निकल रहा है सल्फर डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, पीएम पॉल्यूशन है, ये सारा का सारा भी मिक्स हो रहा है। फिर उसके बाद इसी हवा के अंदर माइक्रो प्लास्टिक तैर रहे हैं। अब जब इतनी सारी चीजें हवा के अंदर तैर रही है तो सबसे पहली चीज तो हमें ये समझनी पड़ेगी कि इसका मतलब जब बादल पहली बार बारिश करेंगे तो पहली बारिश ऐसे काम करेगी जैसे आकाश में पोचा लग रहा है। पहली बारिश का पानी सबसे ज्यादा जहरीला होने वाला है, पहली चीज। रीजन, वो सारी की सारी फिल्थ, सारी की सारी गंदगी धोके लाएगा नीचे। अब वो गंदगी धोके कैसे लाएगा, उसके साथ घुल के नीचे आएगी। तो इसका मतलब क्या बारिश का पानी पीना चाहिए? पहली बारिश का तो बिल्कुल नहीं पीना चाहिए। पहली बारिश हुई उसके बाद दूसरी बारिश का पानी क्या बिल्कुल साफ हो जाएगा? जवाब मैं आपसे पूछता हूं, क्या दूसरी बारिश होने और पहली बारिश होने के बीच में ये तय हो गया था कि हवा एकदम साफ हो गई है? क्या ये तय हो गया था कि एटमॉस्फेयर में कोई गंदगी नहीं रही है? अगर ये तय नहीं हुआ था तो इसका मतलब अगली बारिश भी पोचे की तरह काम करेगी, उस गंदगी को घोल के अपने साथ नीचे लाएगी। इसको ऐसे याद करो, जब जब दिल्ली के अंदर स्मोग आता है तब तक लोग क्या बोलते हैं कि बारिश हो जाए तो ये स्मोग हट जाए, और थोड़ी सी बारिश होते ही लोग कहते हैं अब स्मोग हट गया। मेरा सवाल आपसे है, वो स्मोग हट गया मतलब गया कहां? इसका मतलब वो जो स्मोग वाले पार्टिकल्स थे वो सारे के सारे बारिश में घुल के नीचे आ गए। तो इसका मतलब बारिश का पानी किसी भी कंडीशन में इसलिए सेफ नहीं है क्योंकि उसमें एटमॉस्फेयर की गंदगी घुल के आ रही है। अब थोड़ा सा इसके डिटेल में चलते हैं। जैसे इसके डिटेल के अंदर हम थोड़ा सा जाने की कोशिश करते हैं तो सबसे पहली चीज आती है एसिड रेन। एसिड रेन क्या होती है? ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है एग्जाम्स के अंदर भी। आपकी जानकारी के लिए सिर्फ इतना समझ लो कि जो रेन होती है उस रेन की पीएच अप्रोक्सीमेटली 6 से 6.2 6.3 रहती है, बट अगर इसकी पीएच रेन की पीएच 5.6 या इससे भी कम हो जाए तो उस केस में इस रेन को बोल देते हैं एसिड रेन। अब ये एसिड रेन आती कहां से है? तो देखिए, जितनी भी फैक्ट्रीज है, स्पेशली वो फैक्ट्रीज जिनके पॉल्यूशन में नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स निकलते हैं, जिनके पॉल्यूशन में सल्फर के ऑक्साइड्स निकलते हैं, वो जब वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं ऊपर, क्योंकि एटमॉस्फेयर में स्टीम है तो उसके साथ जब ये रिएक्ट करेंगे तो ये क्या बनाएगा? ये HNO3 बनाएगा नाइट्रिक एसिड, ये H2SO4 बनाएगा सल्फ्यूरिक एसिड। तो मतलब उस केस में अगर एटमॉस्फेयर के अंदर नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड्स है तो जो बारिश होगी वो बारिश नॉर्मल बारिश नहीं रहेगी, वो एसिड रेन बन जाएगी। एसिड रेन को लेकर के 40, 50, 60 सालों से यूएन वाले भी बहुत चिंतित है। यूएसए में, यूके में बहुत सारी ऐसी जगह है जहां पे एसिड रेन बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करती है, बट एसिड रेन लकीली हमारी हेल्थ पे एकदम से सीधा कोई असर नहीं डालती। ऐसे नहीं होगा कि एकदम से एसिड रेन में बाहर में चला गया और मैं जल जाने वाला हूं, बट एसिड रेन जो है वो भी एक रीजन है कि हमें रेन वाटर पीना अवॉइड करना चाहिए। अब अपन चलते हैं उस चीज में जो सीधे हमारी हेल्थ से जुड़ी हुई है। कोई बोलता है कि मैं पानी को उबाल लूंगा, मैं तो बारिश का पानी जो है उसको उबाल लूंगा और फिर पीऊंगा। तो आपको पता होना चाहिए जब आप पानी को उबालते हैं तो पानी के बैक्टीरिया मर सकते हैं, वायरस मर सकते हैं, पैरासाइट मर सकते हैं। लेकिन यहां पे याद रहे एक चीज कि उबालने से भी पानी के अंदर माइक्रोप्लास्टिक है वो मरेगा नहीं, वो पानी में डिजॉल्व होगा।

हैवी मेटल्स अगर थे, लेड था, मरकरी था, जो व्हीकल के एमिशन के अंदर निकल सकता है, फैक्ट्रीज के एमिशन के अंदर निकल सकता है, तो वो नहीं मरने वाला है। और पीएफएज अगर थे तो वो तो बिल्कुल नहीं मरने वाले हैं। पीएफएज जो होते हैं इनको साइंस की दुनिया में फॉरएवर केमिकल कहा जाता है। अब बात आती है फॉरएवर केमिकल का क्या मतलब है, ऐसे केमिकल जो कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होते। अच्छा एक बात और याद रखना कि पानी को उबालने से ये जो केमिकल्स हैं इनकी कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होती है। रीजन, जब आप उबालेंगे तो इवेपोरेट होके कुछ पानी साइड हो जाएगा, जब पानी साइड हो जाएगा तो प्लास्टिक जो है उसकी कॉन्सेंट्रेशन पीपीएम के अंदर और इंक्रीज हो जाती है। तो मतलब प्लास्टिक के पॉइंट ऑफ व्यू से या पॉल्यूटेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो हम ये कह सकते हैं कि पानी को उबालने से बारिश के पानी में पॉल्यूटेंट्स जो है उनका अमाउंट बढ़ जाता है, उल्टा अमाउंट का मतलब कॉन्सेंट्रेशन की फॉर्म में बढ़ जाता है। तो फिर क्या करें, पानी को कैसे पिए, बारिश का पानी पीना ही है तो। अच्छा यहां पर बात आई थी पीएफएज की, तो पीएफएज क्या होता है, परफ्लोरो एल्काइल सब्सटेंसेस। अब इसका सबसे कॉमन एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, आपने नॉन स्टिक कुकवेयर अगर देखे हैं, एक तवा आता है ऐसे नॉन स्टिक वाला जिसके ऊपर खाना चिपकता नहीं है, जो नॉन स्टिक वाला तवा होता है उनसे पूछ रहा है इसके ऊपर क्या है, तो वो आपको बताएंगे कि भाई इसके ऊपर टेफ्लॉन की कोटिंग है। अब ये टेफ्लॉन होता क्या है, तो टेफ्लॉन को अगर आप देखेंगे तो टेफ्लॉन एक्चुअल में क्या है, टेफ्लॉन एक पॉलीमर है जिसको बनाया किससे है, फ्लोरो एल्काइल से बनाया है। तो अब ये जो टेफ्लॉन है या इसी की कैटेगरी की दूसरी चीजें है, जैसे कुछ जैकेट आती है जो वाटरप्रूफ होती है, कुछ जूते आते हैं जो वाटरप्रूफ होते हैं, कुछ पेंट आते हैं जो वाटरप्रूफ होते हैं, ये जितने भी केमिकल है यहां तक के फूड को पैकिंग करने वाला सामान जो आता है, शैम्पू जो आते हैं, इन सबके अंदर पीएफएज होते हैं। अब पीएफएज जो होते हैं उनको साइंस बोलता है फॉरएवर केमिकल। फॉरएवर का मतलब हमेशा रहने वाला। अब पहला सवाल ये उठता है कि पीएफएज को फॉरएवर केमिकल क्यों बोला जाता है, तो पीएफएज को फॉरएवर केमिकल इसलिए बोलते हैं कि ये नेचर के अंदर कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होते, ये 100 से लेके 1000 साल तक एज इट इज रह सकते हैं। इसका एक एग्जाम्पल बताता हूं, मान लीजिए मैंने काम में लेके मेरी एक नोटबुक फेंक दी ऐसे ही। अब नोटबुक को जब मैंने फेंका तो उसके 6 महीने बाद जब मैं देखने जाऊंगा तो नोटबुक का कुछ हिस्सा दीमक खा गई होगी, नोटबुक का कुछ हिस्सा गल के मिट्टी में मिल गया होगा, बट नोटबुक पे अगर कहीं पे प्लास्टिक था तो उसको ना तो दीमक ने खाया होगा ना वो गला होगा, वो ऐसे कैसे पड़ा होगा। तो इसका मतलब वो एग्जाम्पल है फॉरएवर केमिकल का। अब इन प्लास्टिक्स में भी वो प्लास्टिक जो बहुत ही हजारों सालों तक ही नष्ट नहीं होते उनको बोलते हैं पीएफएज, पर फ्लोरो एल्काइल सब्सटेंसेस। ये जो है ये एक बार नेचर के अंदर आ गए, नेचर में कहां से आए, हम लोगों ने यूज किया, हमने फेंके, तो उसके बाद ये घूमते रहते हैं। अब इन्हें जलाया जाए या इन्हें छोड़ा जाए या इन्हें तोड़ा जाए, ये हवा के अंदर छोटे छोटे पार्टिकल्स बन के उड़ते हैं। अब हवा के साथ ये लोअर एटमोसफियर में पहुंच जाते हैं और जब बारिश आती है तो ये बारिश के साथ मिक्स होके नीचे आ जाते हैं। अब ये जो पीएफएज है ये प्लास्टिक अगर बॉडी में जाए तो इनसे कैंसर होता है, वेल प्रूव्ड है, ये चीज सब जगह एस्टैब्लिश हो चुकी है। ये जो है इससे इनफर्टिलिटी होती है, मतलब निसंतानता से सीधा कनेक्शन है प्लास्टिक पार्टिकल्स का। बहुत जगह पर टेस्टिस के अंदर माइक्रोप्लास्टिक मिले हैं, बहुत जगह पर औरतों की ओवरी में माइक्रोप्लास्टिक मिला है, और जहां जहां ये मिला है वहां वहां इनफर्टिलिटी जो है उसकी रेट बढ़ी है। इनफर्टिलिटी का मतलब निसंतानता, बच्चे नहीं होना। फिर उसके बाद ये इम्यून सिस्टम जो है उसको डैमेज करते हैं, कोलेस्ट्रॉल जो है उसको बढ़ाते हैं, और बच्चों के अंदर डेवलपमेंटल इश्यू इनकी वजह से आ सकते हैं। अब फिर से इसी सवाल पे आते हैं जिसकी हम बात कर रहे थे कि ऐसा कब साबित हुआ या ऐसा क्यों है कि हमें बारिश का पानी नहीं पीना चाहिए। तो स्टॉकहोम यूनिवर्सिटी है, बहुत फेमस यूनिवर्सिटी है, वहां के प्रोफेसर इयान कजिन जो है उन्होंने पूरी दुनिया से डेटा इकट्ठा किया। अब जब मैं बोल रहा हूं पूरी दुनिया से डेटा इकट्ठा किया तो इन्होंने यूरोप को लिया, इन्होंने तिब्बत का जो पठार है तिब्बतन प्लेटो है वहां से डेटा लिया, इन्होंने अंटार्कटिका को भी स्टडी किया, मतलब सोचो अंटार्कटिका जिसको सबसे प्योर जगह माना जाता है वहां को भी इन्होंने स्टडी किया। सब जगह का डेटा लेने के बाद इन्होंने ये कहा कि यहां तक के अंटार्कटिका का भी बारिश का जो पानी है अगर उसको भी कोई यूज कर रहा है वो भी हेल्थ के लिए सेफ नहीं है। तो मतलब अगर किसी को ये डाउट है कि मेरे गांव के अंदर बारिश का पानी एकदम सेफ होने वाला है तो उस पर क्वेश्चन मार्क यहां पर ये स्टडी डाल देती है। तो अगर अंटार्कटिका के बारिश के पानी में जहर है, अगर अंटार्कटिका के बारिश के पानी में माइक्रोप्लास्टिक है, थोड़े टाइम पहले आपने पढ़ा होगा कि साउथ एशियन कंट्रीज के अंदर प्लास्टिक रेन की बात हुई थी। प्लास्टिक रेन का मतलब बारिश जो हो रही थी उस बारिश के साथ प्लास्टिक के छोटे छोटे छोटे छोटे पार्टिकल्स आ रहे थे जिनको माइक्रोप्लास्टिक कहते हैं। तो मतलब वो बारिश जिस जिस खेत में गिरी उस खेत में बारिश गिरने के बाद प्लास्टिक का जो अमाउंट था पार्ट्स पर मिलियन के अंदर जो पीपीएम निकाला गया उस

0: इस तक पार्टिकल अंदर जाएंगे। अब इस लेवल पर हमें ये डेटा पता है कि इस तरह से जा रहा है, तो अगर कोई आदमी उस पानी को पिएगा जो बारिश का पानी है और इसी प्लास्टिक से होकर आ रहा है, तो आप सोच सकते हैं उसकी बॉडी में कितना प्लास्टिक जो है वो एंट्री लेगा। अब अपन बात करते हैं कि अगर किसी को बारिश के पानी से दिक्कत है तो उसको क्या चीज ध्यान रखनी है कि भाई बारिश का पानी क्यों प्रॉब्लम करेगा। तो जैसे ही मैंने कहा माइक्रो प्लास्टिक, तो आपको पता होना चाहिए प्लास्टिक के वो पार्टिकल्स जिनका साइज इतना छोटा है कि हमारी आंखें उसको देख भी नहीं सकती, तो वो जो प्लास्टिक है वो अगर हमारी बॉडी में जाएंगे, तीन तरह से हमारी बॉडी में जा सकते हैं, एक हवा के अंदर, दूसरा बारिश के अंदर इकट्ठा हुआ, और तीसरा जो रूफटॉप डिलीवरी मतलब जो हमने बारिश का पानी छत से इकट्ठा किया उसके अंदर भी हो सकता है। तो अब ये ट्रोजन हॉर्स की तरह काम करते हैं। ट्रोजन हॉर्स क्या था आपको पता होगा, हिस्ट्री के अंदर एक स्टोरी आती है कि एक कंट्री पे दूसरी कंट्री अटैक करने वाली थी, तो जिसको अटैक करना था उसने अपने सारे सैनिकों को एक घोड़े के अंदर छुपा दिया था, लकड़ी का घोड़ा था बहुत बड़ा, और उनको कहा कि सॉरी हम आप पे अटैक नहीं करेंगे और ये हम तोहफे के रूप में ये घोड़ा लाए हैं। और वो घोड़ा जो था वो उन्होंने रात को अपने महल के अंदर रख लिया, खुश हो गए कि भाई देखो उन्होंने सरेंडर कर दिया है। रात को उस घोड़े के अंदर से उनके सैनिक बाहर निकले और उन्होंने सबको मार डाला और महल के गेट खोल दिए और अटैक किया, और बाद में वो पूरी कंट्री डिस्ट्रॉय हो गई थी। तब से इसको बोलते हैं ट्रोजन हॉर्स। तो माइक्रोप्लास्टिक जो होता है ये भी हमारी बॉडी के अंदर ऐसे ही एंट्री लेता है। अब ये एंट्री लेने के तरीके दो हो सकते हैं, हो सकता है हवा से जाए और हो सकता है बारिश के पानी के साथ जाए। अब एक बार ये अंदर गया तो अंदर जाते टाइम ये अपने साथ लेड ले जा सकता है, थैलेट्स ले जा सकता है, फंजाई ले जा सकता है, बैक्टीरिया ले जा सकता है, मतलब ये एक कॉकटेल है हार्मफुल चीजों का जो हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचाएगा। तो इसलिए इसको ट्रोजन हॉर्स यहां पर बोला गया है। अब बात आती है कि एक्सपर्ट्स से अगर हम पूछें कि भी बताओ हम बारिश के पानी को काम में लेना चाहते हैं कैसे काम में ले, तो एक्सपर्ट क्या कहते हैं कि सबसे पहले याद रखो कि पहली ही पहली बारिश का पानी जो है उसको तो इकट्ठा करो ही मत, उसको तो जाने दो, बहने दो ऐसे ही उसको, नंबर वन। नंबर टू, दूसरी बारिश और उससे आगे की बारिशों का पानी जो आपने रेन वाटर हार्वेस्ट किया है उसका ट्रीटमेंट डबल लेयर ट्रीटमेंट होना चाहिए। अब वो डबल लेयर ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए कि सबसे पहला ट्रीटमेंट ये है कि मल्टी स्टेज फिल्टर लगाने पड़ेंगे। मल्टी स्टेज फिल्टर में पुराने वाले फिल्टर जो हुआ करते थे कि बजरी रख दी, उसके नीचे रेत रख दिया, उसके नीचे कुछ और डाल दिया और पानी फिल्टर हो गया और पी के खुश हो रहे हैं कि हम तो बारिश का पानी पीते हैं जी, नहीं। तो फिर क्या करना पड़ेगा, आपको कार्बन फिल्टर लगाना पड़ेगा, वो भी एक्टिवेटेड कार्बन जिसको चारकोल बोलते हैं वो वाला फिल्टर लगाना पड़ेगा। आपको आरओ लगाना पड़ेगा सो दैट पीएफएस जो है वो हट पाए। आपको हैवी मेटल और माइक्रोप्लास्टिक जो है उनको हटाने के लिए भी आरओ काम में लेना पड़ेगा। कमाल की बात है, देखो हम इंसान किस लेवल पे पहुंच गए हैं कि हमने बारिश के पानी को भी आरओ से करने के लिए काबिल बना दिया है। मतलब सोचो, बारिश का पानी जो सबसे अच्छा पानी माना जाता था, आज साइंस ये कह रही है कि उसको आरओ किए बिना पीना खतरनाक हो सकता है। अब आरओ कर लिया है, आरओ करने से क्या होगा कि ये सारी चीजें हट जाएंगी लेकिन जर्म्स अभी भी रहेंगे। अगर उसमें कहीं पे बैक्टीरिया हुआ, कोई फंजाई हुआ, उसको कौन हटाएगा? तो इसके लिए फिर क्या करना है, उसको उबालना भी है। तो मतलब अगर कोई आदमी अब ये कहे कि मैं रेन वाटर जो है उसको हार्वेस्ट करके पीने लायक बनाना चाहता हूं, तो भैया डबल लेयर आपको लगानी पड़ेगी। नंबर वन पे आपको आरओ करना पड़ेगा, नंबर टू पे इसको आपको बॉइल करना पड़ेगा। अब आप सोचो एक मिनट के लिए अपने दिल पे हाथ रख के कि ये व्हीकल, ये बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां, ये बड़े बड़े सेटअप, और ये हमारा घमंड के हम ह्यूमन है, हम इंसान है, हमने ये क्रिएट कर दिया, वो क्रिएट कर दिया। सोचो हमने डिस्ट्रॉय कर दिया सब कुछ। सबसे प्योरेस्ट फॉर्म का वाटर रेन वाटर हुआ करता था, आज उसका ये हाल हमने कर दिया है। होपफुली काफी चीजें इससे क्लियर हुएंगी। स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस, लव यू ऑल, नमस्ते नमस्ते। बारिश से अच्छा कुछ नहीं होता, और बारिश का पानी उसके लिए तो कहते हैं कि ये तो अमृत है, अमृत पीने से तो आदमी की उम्र लंबी हो जाती है। लेकिन एक मिनट रुकिए, थोड़ा सा साइंस का जिक्र करेंगे, साइंस की स्टडीज का जिक्र करेंगे और देखेंगे कि बारिश का पानी जिसको अमृत कहा गया है,
1: बारिश का पानी जरा ये जिनका नाम ही अक्सर ए बारे सोचते आए हैं, क्योंकि इतों दारिशा जड़िया ने बारिश वर्गी लगती नहीं। बैक होम की जो गल करते हैं तो उत्थे लगता सी बारिश, वाकई बारिश अगर लोग बारिश के इंजॉय करते सके, बट इतों का माहौल थोड़ा जहा डिफरेंट है। तो पानी की जी सूरत है वह भी बदल गई, बट मैं लगता पानी का की कसूर है, पानी का बेचारा पानी है, क्योंकि ये तो एक कसूर तो उन्होंने लोगों का जो पानी वरतते हैं, जिसे स्पैशली आप गलबात करते हैं भी किस तरीके पानी जरा यूज करते पे है, तो अल्टीमेटली पानी जरा फिर ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੈਸੇ ਬਹੁਤ ਗਾਣੇ ਨੇ।

जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन, इनबॉक्स से लेकर सोशल मीडिया पर एक ही सवाल, एक ही चर्चा, कितने लोग आए, प्रदर्शन किस लिए बुलाया गया, उस सवाल पर आज यह सवाल भारी पड़ गया कि इंटरनेट पर बनी कॉकरोच जनता पार्टी का धरती पर पहला प्रदर्शन हुआ उसमें कितने लोग आए। चालीस डिग्री तापमान, उमस भरी गर्मी, कोई कंकाल की तस्वीर लिए आया कि परीक्षा व्यवस्था की ऐसी हालत कर दी गई। किसी पोस्टर में धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग, तो किसी पर लिखा था कितनी बार आएगी पेपर लीक वाली सरकार। इस पोस्टर में जवाबदेह सरकार की मांग की गई। कई युवाओं ने कॉकरोच के मास्क पहने थे, मैं हूँ कॉकरोच के पोस्टर ले आए थे, तब भी हम गिनकर नहीं बता सकते कि कितने युवा आए थे, क्योंकि इसमें पुलिस वाले भी गिन लिए जाएंगे, तब मेरी गिनती पर सवाल उठ जाएगा। कैमरे की हद में जहां तक दिख सकता है, जितना लग सकता है, उससे यही प्रतीत होता है। कॉकरोच जनता पार्टी के जमीन पर पहले प्रदर्शन में लोग आए थे, कितने लोग पर बार बार जोर देंगे, तो मेरा आपसे यही सवाल होगा, आप क्या उम्मीद कर रहे थे। इंस्टाग्राम पर कॉकरोच जनता पार्टी के 2 करोड़ से ज्यादा फॉलोअर है, तो क्या सभी को आना चाहिए था। अगर 2 करोड़ लोग सड़क पर आ जाते तो पुलिस क्या संभाल पाती। 2 करोड़ का 10% 20 लाख होता है, वह भी छोटी संख्या नहीं, तो किलो में, प्रतिशत में और गिनती में बताना मुश्किल है कितने लोग आए। जो दिख रहा है उससे आप भी अंदाजा लगाइए, कॉकरोच जनता पार्टी के पहले प्रदर्शन में आने वाले युवाओं की संख्या कितनी है। क्या इतनी नजर आ रही है कि आप इसे खारिज कर दें, या फैसला आपको करना है फ्लॉप है या हिट है। लेकिन मेरे लिए यह सवाल बहुत महत्वपूर्ण है कि कितने लोग आए, यह जानते हुए कि भारत की राजनीति में कई राजनीतिक दलों और नेताओं ने अपनी यात्रा 10-5 लोगों से ही शुरू की। कोई कह सकता है कि कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन में पुलिस ज्यादा थी, लोग कम थे। हो सकता है बाद के दिनों में यह कारवां बड़ा हो जाए या आगे चलकर यह पार्टी बिखर भी जाए, मुमकिन है। लेकिन इस सवाल को इसी आधार पर आज आप नहीं छोड़ सकते कि कितने लोग आए। इस दिल्ली में 2014 के बाद से आंदोलन करना गंभीर अपराध जैसा बना दिया गया, किसानों को आतंकवादी कहा गया और 2 साल तक दिल्ली की सीमाओं पर सर्दी गर्मी बरसात में आंदोलन करते रहे, मगर दिल्ली में घुसने नहीं दिया गया। दिल्ली की सीमाओं पर कीले गाड़ दी गईं, कटीली तारे लगा दी गईं कि किसान दिल्ली में ना आ जाएं। देश का किसान डरा नहीं मगर टिका रहा, दिल्ली में ना आ पाया मगर दिल्ली की गद्दी पर बैठे प्रधानमंत्री से माफी मंगवाई और कृषि कानूनों को वापस करवाया। लेकिन दमन इसके बाद भी नहीं रुका। किसान आंदोलन से पहले इसी दिल्ली में नागरिकता कानून को लेकर आंदोलन हुआ, संविधान की प्रस्तावना का पाठ हो रहा था, तब भी हिंसा भड़का दी गई और दंगा भड़काने के नाम पर कई सारे युवाओं को जेल में डाल दिया गया। कोई 4 साल तो कोई 5 साल जेल में रहने के बाद जमानत पर बाहर आया, तो कोई 6 साल से अधिक समय से जेल में है, जमानत नहीं मिली। उमर खालिद, शर्जिल इमाम, नताशा नरवाल, दिवांगना कलिता, सफूरा जरगर, गुलफिशा फातिमा, मीरान हैदर, खालिद सैफी, आसिफ इकबाल, तन्हा, शिफाउर रहमान की जवानी जेल में कैद कर दी गई। उन पर जो कहर बरपाया गया, शायद उसी की सिहरन सवाल पूछने वालों की हड्डी में धस गई है। उन्हें यकीन नहीं हो रहा कि जंतर मंतर पर इतने लोग आने वालों की हड्डी में धस गई है। उन्हें यकीन नहीं हो रहा कि जंतर मंतर पर इतने लोग आ सकते हैं। यह बहुत जरूरी हिस्सा है, इसी से पता चलेगा कि यह सवाल कहां से आ रहा है कि कॉकरोच जनता पार्टी के पहले भू प्रदर्शन में कितने लोग आए, और कहां से आ रहा है
कि कॉकरोच जनता

0: पार्टी के पहले भू प्रदर्शन में कितने लोग आए और कैसे लोग आ गए। 2014 के बाद से दिल्ली और देश भर में आंदोलनों का भयंकर दमन हुआ है। गोदी मीडिया ने उसके पीछे सोरोस और सोरोस के नाती तक को खड़ा कर दिया, पाकिस्तानी बताया। नोएडा में मजदूरों के प्रदर्शन की क्या हालत कर दी गई। परीक्षा को लेकर इसी देश के अलग अलग राज्यों में नौजवानों ने कितनी लाठियां खाई। अदालतों के चक्कर में पड़कर नौजवान हताश हो गए। एनएसयूआई ने कितने प्रदर्शन किए। इंडियन यूथ कांग्रेस ने एआई समिट में शर्ट खोलकर आंदोलन किया तो 9 लोग गिरफ्तार कर लिए गए। आंदोलनों के दमन और उनकी असफलताओं के कारण लोग इस बार बिल्कुल सही सवाल पूछ रहे हैं, क्या कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन में लोग आएंगे या आने से डर जाएंगे। अभिजीत दीप्टे ने जेल का डर झटका तो है, बाकायदा ट्वीट किया कि अमेरिका से भारत आ रहा है। मोदी सरकार का रिकॉर्ड इतना अच्छा है कि कोई आंदोलन के लिए उतरता है उसके बारे में इसी तरह के सवालों की कल्पना लोगों के मन में भर जाती है। सड़क पर उतरने की हिम्मत कर पाएगा या नहीं, मगर अभिजीत दीप के डरा नहीं। अगर कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन में एक भी युवा नहीं आता तब भी यह बात नोट करने वाली है कि एक नौजवान सबको जंतर मंतर पर आने की अपील करता है, जेल जाने से डरता नहीं और अमेरिका से दिल्ली आ जाता है। इसी के साथ यह सवाल भी वाजिब है, अगर अभिजीत दीपके का नाम मोहम्मद असलम होता तब क्या वह ऐसी अपील कर पाता, अकेला अमेरिका से दिल्ली आ जाता और जंतर मंतर पर चला जाता। जब तक एक समाज को लेकर डर है, एक समाज में इस बात को लेकर डर है, तब तक आप नहीं कह सकते अभिजीत दीपके का अकेला चले आना उस डर को नकार देना है। आप अभिजीत के साहस की निजी रूप से तारीफ कर सकते हैं, मगर डर तो तब दूर होगा जब अभिजीत या असलम कोई भी जायज सवालों को लेकर संवैधानिक तरीके से आंदोलन का आह्वान कर सके, कोई गद्दार ना कहे जेल में ना डाले।
1: हमें प्रोटेस्ट पे स्प्रिंग करना है, शांतिपूर्वक करना है। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी ताकतें हैं जो चाहते हैं ये प्रोटेस्ट फेल हो जाए। ये हम सबकी जिम्मेदारी है कि ये प्रोटेस्ट फेल नहीं होने देना है।
0: इसके बाद भी अभिजीत दीपके ने डर को नकारा है। अभिजीत ही नहीं, अगर किसी वेदांत सिद्धांत निसर्ग को किसी से डर नहीं लगता बहुत बड़ी बात है। भारत के इतिहास में एंटायर पॉलिटिकल हिस्ट्री में पहली बार हुआ जब देश के बच्चे प्रधानमंत्री को चैलेंज कर रहे हैं, आपका सिस्टम गलत है। स्कूल के बच्चों से किसी प्रधानमंत्री को मात खाते आपने कम से कम भारत में नहीं देखा होगा। बच्चे आगे आकर बोल रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुप रह जा रहे हैं। अभी तो सेकेंडरी स्कूल के बच्चे बोल रहे हैं। अगर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं हुआ, स्कूलों की हालत ठीक नहीं की गई, तो प्राइमरी स्कूल के बच्चे भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हिसाब मांगेंगे। सीबीएसई के मसले पर सीबीएसई के स्कूलों के एक प्रिंसिपल की आवाज सुनाई नहीं दी, एक ने भी नहीं कहा कि उनके छात्रों के साथ गलत हुआ। क्या ये शर्मनाक नहीं, बड़े बड़े स्कूलों के प्रिंसिपल डर के मारे चुप रह गए। उनके बच्चों का हक मारा जा रहा था, चू तक नहीं बोल पाए। देश भर में शिक्षकों के इतने संगठन, उन्होंने क्यों नहीं कहा कि यह कैसा देश है जहां पेपर चोरी, पैरवी, सिफारिश से नौकरियां दी जा रही हैं, डॉक्टर इंजीनियर बनाए जा रहे हैं, क्या यह कम खतरनाक नहीं। अभिजीत का अमेरिका से दिल्ली चले आना, जंतर मंतर पर पहुंच जाना, कॉकरोच जनता पार्टी का बनना, इन सब डर का विरोध है जो पिछले 10 साल में कायम किया गया, जिस डर से बड़ी बड़ी पार्टियां भरभरा गई। ईडी के डर से कांपते, थरथराते, किटकिटाते एंड गिड़गिड़ाते कितने ही विधायक सांसद बेशर्मों की तरह अपनी पार्टी को तोड़कर बीजेपी में चले गए। सबको पता है क्यों पार्टियां टूट रही हैं। एक भी हेडलाइन आपको इस तरह की दिखी कि कांग्रेस, तृणमूल, शिवसेना के सारे ईमानदार नेता बीजेपी में जा रहे हैं? पत्रकार तक इस

0: बात पर सीना ताने घूम रहे हैं कि मोदी शाह जब भी चाहेंगे किसी भी पार्टी किसी भी सांसद को तोड़ देंगे। अभिजीत से जब डर को लेकर सवाल किया गया तो उसके बैकग्राउंड में मोदी शाह की राजनीति का डर ही है। इस देश में युवाओं की मेहनत की लूट हो रही है, पेपर चोरी हो रही है, उसका विरोध करने और शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांगने से पहले आपको डर लगता है या नहीं? क्या यह कोई सवाल है? इससे दुखद क्या हो सकता है? अभिजीत ने कहा उसे पता है गिरफ्तार हो सकता है, लेकिन मैं अपने संवैधानिक अधिकारों को नहीं छोड़ सकता।
1: यूएसए के लिए अमेरिका के लिए निकल रहा था, उस दिन मेरी माँ रो रही थी थोड़ा कि मेरा बेटा जा रहा है, मेरे साथ कौन रहेगा। मैं समझ सकता था वो बात, लेकिन जितना मेरी माँ उस दिन नहीं रोई, जितना मैं यूएसए को जा रहा था उतना वो सब रो रही थी जब मैं अपने घर वापस आ रहा था। पिछले दो तीन दिन से मेरी माँ और मेरी सिस्टर रो रहे थे कि तू वापस चला जाएगा तो तुझे ये लोग अंदर डाल देंगे। उनको डर था, मुझे अपने घर पर आने से उनको डर लग रहा था। ये डर मेरी माँ का अकेले का डर नहीं है। इस देश में जो भी बच्चा जो भी स्टूडेंट जो भी युवा पॉलिटिक्स के ऊपर बोलेगा, इस सरकार के खिलाफ बोलेगा, इस पर उसकी माँ को डर लगता है कि मेरे बेटे को ये कहीं अंदर ना डाल दे। कब तक हम

0: कॉकरोच जनता पार्टी के पहले प्रदर्शन से धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो या ना हो, मगर इस्तीफे की मांग तो की गई और इस देश के युवाओं को क्या करना चाहिए था। जिस देश में एक परीक्षा ठीक से नहीं हो पाती है, कोई राज्य नहीं बचा जहां पेपर लीक नहीं होता, इस देश की जवानियां परीक्षा देकर दो दो साल नतीजे का इंतजार कर रही हैं, इतना खटारा हाल हो चुका है। इस पोस्टर को देखिए, प्रदर्शन के दौरान ही कॉकरोच जनता पार्टी के इंस्टा हैंडल पर जारी किया गया। इसमें लिखा है, प्रिय कॉकरोचों, गोदी मीडिया आपसे बात करने की कोशिश करेगा और अपने फायदे के लिए आप पर दबाव डालेगा कि आप कुछ विवादास्पद बात कहें, जिसका इस्तेमाल इस प्रदर्शन को बदनाम करने के लिए करें। यह पोस्टर बता रहा है कि देश का युवा गोदी मीडिया के बारे में क्या सोचता है। गोदी मीडिया ने आंदोलनों को देश विरोधी बताया तो अब आंदोलन भी गोदी मीडिया के विरोधी होने लगे हैं। ये बड़ी जागरूकता है। गोदी मीडिया की आलोचना किसी एंकर से ज्यादा प्रधानमंत्री मोदी की आलोचना है। इस प्रदर्शन में
1: जी सो ये मीट मतलब जेड़ा कॉकरोच पार्टी का पहला प्रोग्राम जेड़ा होया ते ओवरऑल जेनू कहिए जिस तरीके दे नाल लोकी इकट्ठे होके बाहर आए, वैसे काफी देर तो बाद लोकी जेड़े है कट दे विच बाहर आए है अंदोलन करने वास्ते। ते जो मैं खास विच देख रहा जी, जदों कॉकरोच पार्टी तुसीं गूगल करदे हो ते उहदी कवरेज जेड़ी है दुनिया भर दे मीडिया ने कीती ਉੱਥੇ ਜਾ ਜਾ ਕੇ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹੇਗੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ। ਇਹਦੇ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜੇ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਇਸਤੀਫਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਹੋਏਗੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੱਕ 5 ਤੇ ਕੱਲ ਦੇ ਵੱਜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਪਤਾ ਨੀ ਹੁਣ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਉਹਦੇ ਚ ਮੈਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਤੇ ਉਹ ਸੈਟਅਪ ਵੀ ਉਦਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹਲੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੇਂ ਕੁਛ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨਲਾਈਨ ਤੋਂ ਬਣੀ ਹੈ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੀ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕੋ ਵੀ ਇਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ

0: ने कहा है कि सालों तक भारत अमेरिका का फायदा उठाता रहा है, लेकिन अब ठीक उल्टा हो रहा है और अमेरिका भारत से खूब पैसा बना रहा है। ट्रंप का ये बयान 1 जून से 4 जून तक भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील पर चली बातचीत के बाद आया है। ट्रंप ने ये भी कहा कि भारत ने अमेरिका पर बहुत ज्यादा टैरिफ लगाया और बदले में कुछ भी नहीं दिया। आज पहली खबर में बात डोनाल्ड ट्रंप के भारत के साथ कारोबारी रिश्तों पर दिए गए ताजा बयान की। फिलहाल भारत पर अमेरिका ने 10% टैरिफ लगाया हुआ है। एक समय अमेरिका ने भारत पर टैरिफ बढ़ाकर 50% कर दिया था। इसके बाद इसे 18% और फिर 10% तक कर दिया गया। मंगलवार 2 जून को डोनाल्ड ट्रंप ने भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील पर कहा था कि सालों के टैरिफ विवाद के बावजूद उनके पीएम नरेंद्र मोदी के साथ काफी अच्छे संबंध हैं। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी अच्छे दोस्त हैं और उम्मीद है कि ये रिश्ता बातचीत यानी ट्रेड डील को फिनिश लाइन पार करवा देगा। दरअसल वो भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील पर चल रही बातचीत की ओर इशारा कर रहे थे। भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने भी पिछले दिनों कहा था कि दोनों देशों के बीच ट्रेड डील पर बात अंतिम दौर में है। भारत के वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने भी कहा था कि ट्रेड डील पर बातचीत के सभी पहलुओं को सुलझा लिया गया है। हालांकि इस बीच अमेरिका के ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव ने भारत समेत 60 देशों पर 10-12% तक अतिरिक्त टैरिफ लगाने का प्रस्ताव देकर स्थिति पेचीदा कर दी है। इन देशों पर जबरन मजदूरी के जरिए बनाए गए सामान को अमेरिका निर्यात करने का आरोप है। भारत को 12.5% वाले अतिरिक्त टैरिफ वाले देशों की सूची में रखा गया है। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल से जब डोनाल्ड ट्रंप के बयान पर प्रतिक्रिया मांगी गई तो उन्होंने कहा, अमेरिका की एक टीम 1 जून से 4 जून तक भारत में बातचीत के लिए मौजूद। उन्होंने कहा, अमेरिका की एक टीम 1 जून से 4 जून तक भारत में बातचीत के लिए मौजूद थी। उम्मीद है कि आने वाले दिनों में बातचीत आगे भी जारी रहेगी और जिस अंतरिम व्यापार समझौते पर फिलहाल चर्चा चल रही है उससे दोनों पक्ष अंतिम रूप दे देंगे। लेकिन भारत में विपक्षी दल कांग्रेस ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्रंप के बयान का हवाला देते हुए लिखा, ट्रंप ने एक बार फिर भारत को अपमानित किया है। अगर नाकाम विदेश नीति का कोई चेहरा होता तो यही होता। कूटनीतिक मामलों के कई विशेषज्ञों ने भी इस पर टिप्पणी की है। भारत के पूर्व विदेश सचिव कमल सिब्बल,
1: एक छोटी स्टूडियो से ब्रेक होगी, वो ललन ने पहला ते फिर उस तो बाद अपना इसे खबर में थोड़ा जा हो रखे बतावांगे क्योंकि थोड़ी जी खबर सुन ली है तुसी ते थोड़ी जी खबर जड़ी है और सुनते हैं आफ्टर ए स्मॉल स्टूडियो ब्रेक।
2: The time is 3 p.m. You are listening to Fairchild Radio CHKF FM 94.7, a multicultural radio station in Calgary.

0: ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਤੇ ਅਗਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਤਰੰਗ ਰੇਡੀਓ 94.7
1: मैं जीवित रहूं या नहीं रहूं मेरी लंबी उम्र रही है और मैं ये इस पर मुझे अगर गौरव किसी चीज पर है तो इस पे है कि सारा जीवन मेरा सेवा में गया केवल इसके गौरव है और किसी चीज पर और जब तक मुझमें सांस है तब तक सेवा ही नहीं जाएगी और जब मेरी जान जाएगी तो मैं कह सकती हूँ कि एक एक खून का खतरा जितना मेरा है वो एक एक खून कि मैं जीवित रहूं या नहीं रहूं मेरी लंबी उम्र रही है और मैं ये कि मैं जीवित रहूं या नहीं रहूं मेरी लंबी उम्र रही है और मैं ये इस पर मुझे अगर गौरव किसी चीज पर है तो इस पे है कि सारा जीवन मेरी लंबी उम्र रही है और मैं ये इस पर मुझे अगर गौरव किसी चीज पर है तो इस पे है कि सारा जीवन मेरा सेवा में गया केवल इसके गौरव है और किसी चीज पर और जब तक मुझमें सांस है तब तक कि सारा जीवन मेरा सेवा में गया केवल इसके गौरव है और किसी चीज पर और जब तक मुझमें सांस है तब तक सेवा ही नहीं जाएगी और जब मेरी जान जाएगी तो मैं कह सकती हूँ कि एक एक खून का खतरा जितना मेरा है वो एक एक खून एक भारत को जीवित करेगा।
2: कभी कभी होता है कि कुछ लोगों को अपनी मौत का अंदाजा पहले से ही हो जाता है। भारत की तीसरी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के साथ भी ऐसा ही हुआ। भुवनेश्वर में ये भाषण देने के बाद उन्हें ये खबर मिली कि दिल्ली में उनके पोते और पोती की कार का एक्सीडेंट हो गया था। वो अपनी यात्रा बीच में ही छोड़कर दिल्ली लौट आई। अगले दिन 31 अक्टूबर 1984 को जाने माने लेखक और अभिनेता पीटर उस्तिनोव उनका इंटरव्यू लेने वाले थे। ठीक 9:12 पर इंदिरा गांधी ने अपने निवास और ऑफिस के बीच के विकेट गेट को पार किया। गेट पर तैनात बीएन सिंह को देखकर मुस्कुराई, लेकिन बीएन ने अपनी रिवॉल्वर निकालकर उन पर फायर करना शुरू कर दिया। जैसे ही वो जमीन पर गिरी, गेट के दूसरी तरफ तैनात सतवंत सिंह ने भी अपनी स्टेन गन की पूरी मैगजीन उनके ऊपर खाली कर दी। उन दोनों ने 5 महीने पहले भारतीय सेना द्वारा स्वर्ण मंदिर पर किए गए हमले का बदला ले लिया था। 31 मई 1984 की शाम मेरठ में 9 इन्फेंट्री डिवीजन के कमांडर मेजर जनरल कुलदीप बुलबुल बराड अपनी पत्नी के साथ दिल्ली जाने की तैयारी कर रहे थे।
3: शाम को मेरे को एक टेलीफोन कॉल आया कि अगले दिन सुबह 1 तारीख के सुबह मेरे को चंदी मंदिर पहुंचने का है एक मीटिंग के लिए। और पहली शाम को हमने मेनिला जाना था, हमारी टिकटें बुक हो गई थी, हमने अपने ट्रेवलर चेक्स ले लिए थे और हम दिल्ली जा रहे थे अपने जहाज पकड़ने के लिए। मेरठ से दिल्ली बाय रोड गया, वहां से बाय प्लेन मैं चंडीगढ़ पहुंचा और सीधा वेस्टर्न कमांड हेडक्वार्टर में गया। जब वहां पहुंचा तो मेरे को खबर मिली कि मेरे को ऑपरेशन ब्लू स्टार कमांड करना है और अमृतसर जल्दी से जल्दी जाना है क्योंकि हालात बहुत खराब हो गई हैं। बिंद्रन वाले ने पूरा कब्जा कर लिया है गोल्डन टेम्पल के ऊपर। पंजाब में इस वक्त कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं रहा है, तो जल्दी से जल्दी ये सिचुएशन को ठीक करने का है, नहीं तो पंजाब अपने हाथ से निकल जाएगा। तो मेरी छुट्टी कैंसिल हो गई और मैं एकदम हवाई जहाज में बैठ के ब्रीफिंग के बाद अमृतसर पहुंचा।
2: भिंडरांवाले को कांग्रेसियों ने ही बढ़ावा दिया। उनको बढ़ावा देने के पीछे मकसद ये था कि अकालियों के सामने सिखों की मांग उठाने वाले किसी ऐसे व्यक्ति को खड़ा किया जाए जो उनको मिलने वाले समर्थन में सेंध लगा सके। भिंडरांवाले विवादास्पद मुद्दों पर भड़काऊ भाषण देने लगे और धीरे धीरे उन्होंने केंद्र सरकार को भी निशाना बनाना शुरू कर दिया। पंजाब में हिंसा की घटनाएं बढ़ने लगी। 1982 में भिंडरांवाले मेहता चौक गुरुद्वारा छोड़ पहले स्वर्ण 1982 में भिंडरांवाले मेहता चौक गुरुद्वारा छोड़ पहले स्वर्ण मंदिर में गुरु नानक निवास और उसके कुछ महीनों बाद

0: अकाल तख्त से अपने विचार व्यक्त करने लगे।
1: प्यारे खालसा जी,
0: और उसके कुछ महीनों बाद अकाल तख्त से अपने विचार व्यक्त करने लगे।
1: प्यारे खालसा जी, अज आप शहीदों की याद एकत्र हुए हैं। लाला जगत नारायण ने बहुत नंद पातशाह के शब्द वरते, इथों तक कहा कि यह दोवें हिस्से सिख
0: वरिष्ठ पत्रकार और पहले बीबीसी के लिए काम करने वाले सतीश जेकब को भी कई बार भिंडरावाले से मिलने का मौका मिला।
2: मैं जब भी वहाँ जाता था, उनके जो संरक्षक होते थे वो दूर से कहते आओ जी बीबीसी आ गए जी बीबीसी। कभी उन्होंने बीबीसी नहीं कहा, बीबीसी आ गए जी बीबीसी। तो जाओ जी तुसी अंदर जाओ, संत जी आपका इंतजार कर रहे हैं। तो मेरे से बड़े आराम से मिलते थे। जब मैंने उनको पहली बार मार्क टली से मिलाया, तो ये मैं कभी नहीं भूलूंगा कि मार्क टली से जब मिलाया तो मार्क टली से उन्होंने कहा कि तुम्हारा क्या धर्म है। तो उन्होंने बोला कि मैं क्रिश्चियन हूँ। चला अच्छा, तो आप जीसस क्राइस्ट को मानते हैं? हाँ जी। तो बिंद्रा वाले ने कहा लेकिन जीसस क्राइस्ट की तो दाढ़ी थी, तुम्हारी दाढ़ी क्यों नहीं है? तो मार्क टली ने कहा कि खैर ठीक है, हम ऐसे ही ठीक है। तो कह लगा नहीं तुम्हें मालूम नहीं है, बगैर दाढ़ी के तुम औरत जैसा लगता है। तो बड़ा अजीब किस्म की ये गुफ्तगू थी। खैर मार्क टली तो बहुत अच्छे आदमी है, उन्होंने हंस के टाल दी सारी बात को। भिंद्रा वाले से मेरी एक बार बहुत लंबी चढ़ी अकेले में बात हुई। हम दोनों सबसे ऊपर छत पे बैठे हुए थे जहाँ कोई नहीं जाता, बंदर ही बंदर घूम रहे थे। तो मैंने ऐसी बातों में भिंद्रा वाले से कहा, मैंने जो कुछ आप कर रहे हैं एक दिन ऐसा होगा कि आपके सामने कोई एक्शन होगा। तो उन्होंने मुझे बड़े सादगी से कहा कि अरे क्या एक्शन होगा, तुम्हें मालूम नहीं है। उन्होंने छत से मुझे इशारा करके देखा, देखो वो देखो सामने खेत है, खेत नजर आए थे वहां से, खेत बस 7-8 किलोमीटर का रास्ता है, वहां पे बॉर्डर है और हम पीछे से निकल के आराम से बॉर्डर पार करके उधर चले जाएंगे और वहां से फिर हम छापामार युद्ध करेंगे। बड़े कॉन्फिडेंस से उन्होंने मुझे बताया और मुझे ये हैरानी थी कि ये शख्स मुझे ये सब कुछ बता रहा है और ट्रस्ट कर रहा है। उसने मुझसे ये भी नहीं कहा कि तुम इस बात को छापोगे नहीं।
0: 4 जून 1984 को भिंडरावाले के लोगों की पोजीशंस का जायजा लेने के लिए एक अधिकारी को सादे कपड़ों में स्वर्ण मंदिर के अंदर भेजा गया। 5 जून की सुबह जनरल बराड ने ऑपरेशन में भाग लेने वाले सैनिकों को उनके ऑपरेशन के बारे में ब्रीफ किया।
3: 5 तारीख के सुबह 4:30 बजे के करीब मैंने हरेक बटालियन के पास जाके कोई आधा घंटा उनके जवानों के साथ बात की। उनसे मैंने ये बताया कि हालात कितने खराब हो गए हैं और ये जो अपना स्वर्ग मंदिर है, हमको ये नहीं सोचना चाहिए कि हम किसी होली प्लेस के अंदर जाके उसको बर्बाद कर रहे हैं। नहीं, हम उसकी सफाई कर रहे हैं, उसमें खून बह चुका है और हम लोग बिल्कुल जितने कैजुअल्टी कम हो सकते हैं उतना होना चाहिए, डैमेज नहीं होना चाहिए गोल्डन टेम्पल को। हमको ये नहीं सोचना है कि हम हिंदू हैं कि मुसलमान हैं कि सिख हैं। मैंने साथ ही उनसे ये भी कहा कि आप में से अगर कोई जवान इतना सोचता है कि मैं मेरे को अंदर नहीं जाना है, कोई बात नहीं, आप खड़े हो जाओ और मैं आपके कमांडिंग ऑफिसर को कहूंगा कि आपको अंदर जाने की जरूरत नहीं है और आपके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। पहले बटालियन में मैं गया, कोई नहीं खड़ा हुआ। दूसरे में कोई नहीं खड़ा हुआ। तीसरे में कोई नहीं खड़ा हुआ। चौथी बटालियन में एक सिख ऑफिसर खड़े हो गया। मैंने कहा कोई बात नहीं बेटा, आपको अंदर जाने की जरूरत नहीं है, अगर आपके फीलिंग्स इतने स्ट्रांग हैं आपके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। उसने कहा साहब आप मेरे को गलत समझ रहे हो, मैं हूँ 2nd लेफ्टिनेंट रैना, अंदर जाना चाहता हूँ और मैं सबसे आगे, अंदर मेरे को आप भेजिए ताकि मैं अकाल तख्त में सबसे पहले पहुंच के भिंडरावाले को पकड़ लूं। मैंने कहा बहुत शाबाश, आप तो बहुत ही बहादुर जवान हो। और मैंने इनके कमांडिंग ऑफिसर से कहा कि इनकी प्लटून सबसे आगे सबसे पहले स्वर्ग मंदिर में जाएगी और उसकी प्लटून सबसे पहले अंदर गई। इतनी मशीन गन फायर लगे उसके ऊपर कि उसकी दोनों टांगे टूट गई, खून बह रहा था। उनका कमांडिंग ऑफिसर कह रहा था मैं इसको रोकने की कोशिश कर रहा हूँ, ये रुक नहीं रहे, वो क्रॉलिंग करते जा रहे हैं अकाल तख्त की तरफ। मैंने कहा नहीं, एम्बुलेंस यहाँ खड़ा है, उसको जबरदस्ती अभी आप उठा के वापस ले आइए बाहर। उसके पैर एम्प्यूटेट हो गए। तो उसकी बहादुरी के लिए मैंने उसको अशोक चक्र दिलवाया।
0: 10 बजे के आसपास सामने से हमला बोला गया। काली वर्दी पहने पहली बटालियन और पैराशूट रेजिमेंट के कमांडोज को निर्देश दिया गया कि वो परिक्रमा की तरफ बढ़ें, दाहिने मुड़े और जितनी जल्दी संभव हो सरोवर के छोर तक पहुंचकर अकाल तख्त की ओर कदम बढ़ाएं। लेकिन जैसे ही कमांडोज आगे बढ़े उन पर दोनों तरफ से ऑटोमेटिक हथियारों से जबरदस्त गोलीबारी की गई।

0: रेहान फजल, बीबीसी दिल्ली।
1: सुनिए सी रेहान फजल जी एक रिपोर्ट कि भी उस दिन की कुछ होया तो उस तो पहला क्योंकि बीबीसी को काफी इनफॉरमेशन जड़ी है वो होंगी है जड़ी पेश की गई ते उधर नार्मल जड़ी एक होर चीज सामने आती है क्योंकि हूं 42 साल होने तो बाद आज की तारीख दे विच कुछ एक चीजा जड़िया ने वो इस तरीके सामने आने लग पी कि भी जड़िया लोगों ने परिवार अंदर मारे गए है वो इस गल की डिमांड कर रहे हैं भी साढ़े परिवार को बाहर क्यों नहीं आन दिता गया जो बाकी कई लोग जड़े ने वो बाहर चले गए थे ते इन्हों भी तो बाहर जान देना चाहिए क्योंकि ये तो नहीं इस तरीके दे नाल जो बाकी तुसी लोगों को कहता भी तुसी चले जाओ अपने अपने घर ये लोग जड़े ने क्यों अंदर रहे क्योंकि उस दिन तुहानू पता भी काफी कट सीगा उत्थे ते इस मौके दे उत्ते लोगों नू जिहड़ा वो बाहर जान देना चाहिए सीगा सो इस तरह दी जिहड़ियां घटनावां ने वो काफी ज्यादा जिहड़ियां हुण लोगों दे विच आनियां शुरू हो गईयां ते इनफॉर्मेशन जिहड़ी आनी सामने शुरू हो गई कि इहदे उत्ते हुण आपां जे ते अपने आप नू सिर्फ ये कहीए कि साडे उत्ते अटैक किया गया ते जां आपां इह कहिंदे इक पासे कि वी इक पासे ते आपां लड़े हां ते दूजे पासे वैसे बोल्ड पोस्ट के उत्ते भी चरण होने भी इस गल की पोस्ट पाया काफी लोगों ने उत्ते नाराजगी भी शो की ते काफी ने इस फेवर दे विच भी गल की कि भी ये हर साल ही तुसी ये दिन जिहड़ा मनांदे हो 45 सालां तों ते उहदे विच कोई भी खुल के इस गल ते गल नहीं करता कि भी ये प्रोग्राम जिहड़े ने वो चाहे लीडर होण विद्वान होण प्रचारक होण पत्रकार आदि कहिंदे भी ये सारे इस गल दे उत्ते नहीं गल करते भी सानू अपना कसूर मनना चाहिए कि नहीं मनना चाहिए सब कुछ जरा जिस टाइम दे उत्ते होया क्योंकि एक पासे ते आपां कहने भी आपां साडे उत्ते अटैक किया गया दूजे पासे आपां अटैक की तैयारी तो पहला तो करके बैठे हैं मतलब सानू पता सीगा भी ये सब कुछ होना ते जनरल सुबेग सिंह वर्गे जेडे फौजी सीगे जिन्होंने लोगों नू पहला तो ट्रेनिंग दी सारा कुछ किया ते इहदा मतलब ये सीगा भी लड़ाई कदी भी होएगी दूजे पास बीबीसी की जी आप गलबात सुनी तो उन्होंने कहा भी नाल ही बॉर्डर है आप जो ही कोई ऐदा की गलबात होनी है बॉर्डर सानी निकल के तो उत्थे पहुंच जाना तो कोई सानू ज्यादा टाइम ज्यादा नहीं लगना सो ये जिहड़ियां गल्लां बातां सामने आई बट नाल दी नाल ही ये भी सामने आता कि भी जो लोगों नू तुसी रोक रहे हो बेसिकली जिहड़े आम पब्लिक जिहड़ी उत्थे आई सीगी तो उन्होंने शहीदियां पाने वास्ते कहा पर दूजे पासे तुसी अपने खास खास जिहड़े तुहाडे नियर एंड डियर सीगे उन्होंने परिवार जिहड़े ने ऑलरेडी बाहर जा चुके सीगे उन्होंने पता सीगा भी इत्थे कुछ ना कुछ ऐदां दी वारदात जिहड़ी हो सकदी है ते उन्होंने लोगों नू क्यों रोकिया रखिया अंदर जिहड़े ने बेचारा का कोई कसूर नहीं सी हैगा सो इहदे उत्ते काफी हुण चिंतावां जिहड़ियां ने चलनियां शुरू हो गईयां वंस अगेन लोकी जिहड़े ने इत्थे गलबात जिहड़ी है आना शुरू हो गया जी सामने सिस्टम जरा चल रहा ते आज का जरा प्रोग्राम है जी इस तरीके नाल चलेगा ते प्रोग्राम दे विच कुछ एक होर खबरां ते गल्लां बात जिहड़ियां ने तुहाडे नाल शेयर करदे रहांगे ये प्रोग्राम तुसी मंडे ट्यूजडे थर्सडे फ्राइडे शाम नूं 7 to 8 ते संडे 1 बजे तो लैके 5 बजे तक सुनदे हो अज का प्रोग्राम जरा जरा प्रोग्राम है वह ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂਗੇ ਵੈਸੇ ਕਾਫੀ ਇਸ ਖਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਰਿਪੋਰਟ ਪਰ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਬਣਿਆ ਵੀ ਤੇ 42 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ

0: ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਫੋਟੋਜ਼ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਚੇਂਜਸ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਆਈ ਵੈਬ ਗਾਇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 403-400-0203-400-0203 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਨ ਦੀ www.iwebguy.ca
1: एयरड्री अब आपकी फैमिली की सेहत को मिल गया है एक नया घर।
2: पेश है लाइफलाइन मेडिकल क्लिनिक जहां बेहतरीन देखभाल आपके बिल्कुल करीब है।
1: मिलिए डॉक्टर मगर शाह और डॉक्टर समरीन रहमान से।
2: हमारे तजुर्बाकार डॉक्टर्स आपको देती है मुकम्मल केयर।
1: खवातीन की सेहत से लेकर बच्चों की देखभाल और रूटीन चेकअप्स तक इंग्लिश हिंदी और उर्दू में कंसल्टेशन दस्तियाब है।
2: नए पेशेंट्स का खैर मुकदम है और वॉक इन सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक खुले हैं।
1: आज ही विजिट करें किंग्स व्यू।

0: special events.
1: ਜੀ ਸਬਰੰਗ ਰੇਡੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਦਿਨ ਖੁੱਲ ਜਾਣੇ ਆ ਜੀ ਵੈਦਰ ਵੈਸੇ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਬਟ
0: पिछले साल चीन के एक कंपनी शंचिन केमिकल ग्रुप ने अपने 28 से 58 साल के कर्मचारियों को कहा कि अगर वो सितंबर 2025 तक शादी नहीं पिछले साल चीन के एक कंपनी शंचिन केमिकल ग्रुप ने अपने 28 से 58 साल के कर्मचारियों को कहा कि अगर वो सितंबर 2025 तक शादी नहीं करेंगे तो उन्हें नौकरी से निकाल दिया जाएगा। कंपनी ने अपने नोटिस में ये भी लिखा था कि सरकार की बात ना मानना और शादी ना करना या बच्चे पैदा ना करना सरकार का विरोध माना जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय हेडलाइंस पर नजर डालें तो यही लगता है कि इस वक्त चीन के सामने सबसे बड़ी चुनौती है अमेरिकी अर्थव्यवस्था को हर मायने में पीछे छोड़ना, ईरान और अमेरिका के बीच चल रही जंग या फिर ताइवान के साथ चल रहा तनाव। लेकिन इन सब के अलावा चीन में शी जिनपिंग की सरकार लगभग एक दशक से एक दीर्घकालिक समस्या से भी जूझ रही है जो है नो मैरिज नो किड्स का ट्रेंड, यानी चीन में लोग ना शादी करना चाहते हैं और ना बच्चे पैदा करना।
2: No!
0: इस साल की पहली तिमाही में चीन में होने वाली शादियां बीते एक दशक में सबसे कम रही। पहले क्वार्टर में तो 17 लाख से भी कम शादियां रजिस्टर हुई। साल 2017 के मुकाबले शादियों के रजिस्ट्रेशन के आंकड़े लगभग आधे रह गए। लेकिन ऐसा नहीं है कि शादियों में अचानक गिरावट आई है, इसके पीछे कई वजहें हैं और सबसे बड़ी वजह है कि शादी और बच्चों की जिम्मेदारी आज भी पूरी तरह महिलाओं पर ही है। आज भी उनके सामने यह विकल्प रखा जाता है, या तो परिवार चुनो या करियर, अगर दोनों साथ साथ चुना मतलब दुगना काम। और ये सिर्फ घर परिवार तक सीमित नहीं है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम तो कामकाजी महिलाओं के लिए माँ बनने को सबसे बड़ी पेनल्टी के रूप में देखता है, क्योंकि माँ बनने के बाद करियर में आगे बढ़ने के मौके महिलाओं के लिए सीमित हो जाते हैं।
3: और महिलाओं की पीठ और हड टूट गई है काम करते करते करते, और आज की महिला और एजुकेटेड महिला जो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाह रही है वो इस स्टोरी को एक्सेप्ट नहीं कर रही।
0: लेकिन सरकारें कह रही हैं कि प्रजनन दर इसलिए कम हो रही है क्योंकि महिलाएं बच्चे पैदा नहीं करना चाह रही। लेकिन सरकारें खुद क्या कर रही हैं? चीन में तो हालत ये है कि खुद सरकार जनता को फोन करके कह रही है अरे शादी क्यों नहीं कर रहे, शादी हो गई तो बच्चे पैदा क्यों नहीं कर रहे। शादी की काउंसलिंग, मैच मेकिंग वगैरह के लिए बकायदा यूनिवर्सिटी में कोर्सेज शुरू किए गए हैं। सोशल मीडिया पर ऐसे कंटेंट को बैन कर दिया जाता है जो शादी का विरोध करते हैं या मर्दों और औरतों को एक दूसरे के खिलाफ दिखाते हैं। अगर किसी ने शादी नहीं की तो उसकी कंपनी नौकरी से निकालने की धमकी भी दे सकती है। शादी करने वालों को सब्सिडी दी जा रही है, यहाँ तक कि सरकार खुद शादी का खर्च उठाने को तैयार है। बच्चों की डिलीवरी के मेडिकल बिल चुकाने में सरकार मदद के लिए तैयार है, फिर भी लोग कह रहे हैं नहीं करनी शादी, नहीं चाहिए बच्चे। लोग शादी करें इसके लिए चीन ने मैरिज रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया आसान कर दी है, अब वो देश में कहीं भी अपनी शादी रजिस्टर करवा सकते हैं। चीन में 3 साल तक के बच्चों की देखभाल के लिए हर साल 3600 युआन यानी करीब 50,000 रुपए से ज्यादा की सब्सिडी मिलती है। शादी और बच्चे पैदा होने के बाद मिलने वाली छुट्टियों को भी बढ़ा दिया गया, यहाँ तक कि तलाक के नियम बदल दिए गए हैं। कॉन्डम और दूसरे गर्भ निरोधकों पर 13% टैक्स लगा दिया गया, ये सब सिर्फ इसलिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग शादी करें और बच्चे पैदा करें। फिर भी चीन में बहुत सारे लोग शादी करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। दरअसल चीन का समाज आज भी परंपरावादी है, जैसे कि वहां भी भारत की तरह शादी के बिना बच्चे पैदा करने को अच्छा नहीं माना जाता। अब शादियां कम हो रही हैं तो बच्चे भी कम पैदा हो रहे हैं, और कम बच्चे पैदा होने का मतलब है कि भविष्य में काम करने वालों की कमी होगी। यही चीन की अर्थव्यवस्था के लिए सबसे बड़ी चुनौती है और समाज के लिए भी स्थिति जटिल हो रही है।
3: जो डिक्लाइन हुआ है फर्टिलिटी का वो उसके बहुत से पहलू हैं चाइना में। एक तो है रैपिड एजिंग हो गई, जब पॉपुलेशन तेजी से घटी।

0: वन चाइल्ड पॉलिसी करके, फिर श्रिंकिंग वर्कफोर्स, क्योंकि यंग लोग कम थे तो श्रिंकिंग वर्कफोर्स चैलेंज हुआ उनके यहाँ काम करने के लिए, यंग बॉडी पर्सन कम होते गए, और उसके बाद श्रिंकिंग वर्कफोर्स के बाद स्क्यूड सेक्स रेशियोज, वहाँ महिलाएं कम हैं पुरुष ज्यादा हैं, एंड इमेंस प्रेशर ऑन जो यंग लोग हैं उन पे, प्रेशर सिर्फ घर के काम का नहीं, उनके बड़ों बूढ़ों को देखने का, नौकरी, ये सब जो चैलेंजेस हैं उनको बहुत ही महंगी पड़ी हैं।
1: लेकिन चीन आखिर इस हालात में पहुंचा कैसे? 1980 में चीन ने अपनी बढ़ती जनसंख्या पर लगाम लगाने के लिए सिर्फ एक बच्चे की नीति बनाई, वन चाइल्ड पॉलिसी, यानी किसी भी शादीशुदा जोड़े को एक से ज्यादा बच्चे पैदा करने की इजाजत नहीं थी। जिन लोगों ने इसका विरोध किया उन्हें तब देश विरोधी भी कहा गया। नियम ना मानने वालों पर जुर्माना लगा, उन्हें जेल भेजा गया। बेशक इससे आबादी पर अंकुश लगा, लेकिन 2010 का दशक आते आते उसे नीति के नुकसान समझ आने लगे। देश की आबादी तेजी से बूढ़ी होने लगी, जिसका सीधा असर अर्थव्यवस्था पर पड़ने लगा। बुजुर्गों की देखभाल बड़ा बोझ बनने लगी और जेंडर इम्बैलेंस भी बढ़ गया।
0: चाइना की वन चाइल्ड पॉलिसी सबसे क्लियर एग्जाम्पल है कि कोअर्सिव या फोर्सफुल पॉलिसीज डेमोग्राफिक इंजीनियरिंग को लेके कैन नॉट क्रिएट लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी। वन चाइल्ड पॉलिसी बैकफायर करी है चाइना की।
1: इसी का नतीजा है कि वन चाइल्ड पॉलिसी के करीब 45 साल बाद अब चीन की सरकार लोगों से विनती कर रही है कि वो शादी करें और बच्चे पैदा करें। चीन में पिछले साल जन्म दर 1949 के बाद अपने सबसे निचले स्तर पर रही। 2024 में चीन में हर 1000 लोगों पर औसतन लगभग 5 से 6 बच्चों का जन्म हुआ। चीन दुनिया में सबसे कम प्रजनन दर वाले देशों में शामिल है। हर महिला वहां सिर्फ एक बच्चा पैदा कर रही है, जबकि चीन की बूढ़ी होती जनसंख्या के लिए जरूरी है कि हर महिला कम से कम 2 बच्चे पैदा करे।
0: पहले पैनिक था कम बच्चे करो, अब पैनिक है कि आप ज्यादा बच्चे करो। बहुत से देशों में बर्डन, जो ये डेमोग्राफिक चैलेंज है, उसका बर्डन महिलाओं के ऊपर डिस्प्रोपोर्शनेटली डाला जा रहा है। अगर कम बच्चे होंगे तो कंट्री के लिए आपको और बच्चे करने होंगे। कौन महिला कंट्री के लिए बच्चे करती है? कौन परिवार कंट्री के लिए बच्चे करता है?
1: लेकिन शादी और बच्चे ना करने के पीछे की सबसे बड़ी वजह क्या है? आर्थिक अनिश्चितता, शादी करना, घर खरीदना, बच्चे पैदा करना, फिर उनकी देखभाल करना, उन्हें पढ़ाना लिखाना, ये सब आम इंसान के लिए लगातार मुश्किल होता जा रहा है। एक रिपोर्ट बताती है कि चीन में 18 साल की उम्र तक एक बच्चे की परवरिश पर करीब 5,38,000 युआन, यानी लगभग 76 लाख रुपए खर्च होते हैं। लेकिन शादी और बच्चे ना करने की वजह ये भी बताई जाती है कि वहाँ महिलाओं का करियर पर ज्यादा फोकस है।
0: महिलाएं देर से शादी करना चाह रही हैं। इनफैक्ट जो बहुत अहम मुद्दा ये भी है, डीप इशू इज दैट बहुत सी सोसाइटीज हैव मॉडर्नाइज्ड इकोनॉमिकली फास्ट बट सोशली बहुत स्लो हैं।
1: वन चाइल्ड पॉलिसी ने चीन का एक और नुकसान किया, बेटों और बेटियों के बीच अंतर बढ़ा। नतीजा देश में लड़कों के मुकाबले लड़कियां कम हो गईं। भारत की तरह चीन में भी बहुत से परिवार बेटियों से ज्यादा बेटों को अहमियत देते हैं। वन चाइल्ड पॉलिसी के रहते जिन परिवारों में बेटियां पैदा हुई उनमें से ज्यादातर लोगों ने उन्हें पढ़ा लिखा कर आर्थिक तौर पर आत्मनिर्भर बनाया। जब तक ये नीति खत्म हुई तब तक ऐसी औरतों की एक बड़ी आबादी तैयार हो चुकी थी जो ये समझने लगी थी कि शादी करना उनके जीवन का इकलौता मकसद नहीं है। लेकिन अब सरकार की सोच में बदलाव आ गया है। वो चाहती है कि महिलाएं कामकाज के साथ साथ पारंपरिक भूमिकाओं में वापस लौटें, यानी शादी करें और बच्चे पैदा करें, अपना घर संभालें, जैसा कि राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अपने एक भाषण में कहा था कि महिलाओं के लिए एक अच्छी पत्नी और माँ होना बहुत जरूरी है। उन्होंने ये भी कहा था कि औरतों को शादी और बच्चे पैदा करने की एक नई संस्कृति बनानी चाहिए। लेकिन ये समस्या सिर्फ आज चीन की नहीं रह गई है, दुनिया के 195 देशों में से करीब दो तिहाई

0: ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜਿਸ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਬਟ ਕੁਛ ਕੰਟਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਹਰ ਜੇ ਇੰਡੀਆ ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਦੋ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ
1: Olympics
0: cover the report to survive off the media.
1: Exercise karne laga ho aajkal.
2: Oh, you're working out.
1: Yes.
2: Are you planning to go for the Olympics?
3: Are you planning?
2: I mean Olympics.
4: नमस्कार, मैं हूं रितिका.
5: और मैं हूं किरण.
4: और आओ बात करें कि इस नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है. पहली क्लिप देखकर आप कुछ समझ ही गए होंगे कि आज की हमारी बातचीत किस मुद्दे पर होगी. लेकिन लेकिन किरण, हम आज सिर्फ फैट लॉस ड्रग्स के फायदे नुकसान के बारे में बात नहीं करेंगे, हमारी चर्चा उससे कहीं आगे की होगी.
5: बिल्कुल, हमारे साथ हमारे दो गेस्ट मौजूद हैं. हमारे साथ पाकिस्तान से है इफ़त उमर, जो कि एक बहुत ही जानी मानी एक्टर हैं और इसके साथ साथ होस्ट भी हैं. हमारे साथ इंडिया से हैं डॉक्टर नंदिनी, जो कि GLP-1 कोच हैं.
4: एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में रेड कार्पेट पे उनकी ड्रेसेस से ज्यादा सेलिब्रिटीज की उन्होंने ओलंपिक ली है या नहीं ली है, इस पर चर्चा हो रही है. उनके जो वो लोगों को एड्रेस कर रहे हैं स्टेज पर, उस पर भी ओलंपिक आ चुका है. इस पर आप बताइए नंदिनी, अचानक क्यों हो रहा है ऐसा?
6: मैं शाहरुख खान की बहुत बड़ी फैन हूँ और मैं जानती हूँ कि उनमें ये कला है कि वो दबे शब्दों में सच बात कह देते हैं. सो आई नो कि वो एग्जैक्टली क्या कहना चाह रहे थे. एंड शायद वो सच भी है कि जब करण जौहर ने वेट लॉस किया तो सब इट वाज अराउंड द वर्ल्ड की ये ओलंपिक के थ्रू ही हुआ है. ऐसे कोई ड्रग यानी कि GLP-1 जिसे हम कहते हैं, कैटेगराइज करते हैं, ये आपकी मदद करते हैं, तो उसमें कोई शर्म की बात नहीं है. और ये अच्छी बात है कि GLP-1 सिर्फ डायबिटीज में ही नहीं, आपके मेटाबॉलिक रीसेट के साथ साथ आपके इंसुलिन रेजिस्टेंस, आपके फैट लॉस, इंच लॉस, सब जगह से हेल्प करता है. तो वो आपको वो इतना फायदा देता है कि आपकी बॉडी अपने आप एक इंटरनली तरीके से इतनी हेल्दी हो जाती है कि आप फिर से वेट गेन नहीं करते एंड यू स्टार्ट लिविंग अ वेरी हेल्दी लाइफ.
4: पर जो समाज का प्रेशर है कि आपको एक तरीके का दिखना है, चाहे वो किसी भी तरीके से हो, उस पर चर्चा होनी चाहिए आज.
5: बिल्कुल, उस पर बात होनी चाहिए. बल्कि हमारे साथ हमारे जो आवाम है उन्होंने कुछ क्वेश्चंस भी पूछे और वो ये देखना चाहते हैं कि आखिर हमारे डॉक्टर्स या हमारे एक्सपर्ट्स या एक्ट्रेस इस पे क्या कहना चाहेंगे. तो चलिए चल के उनको क्वेश्चन सुनते हैं.
7: मैं इंडियन गेस्ट से ये पूछना जरूर चाहूंगा कि वहाँ के मैंने फनकारों को भी देखा है कि उन्होंने बहुत अपनी बॉडी में चेंजेस किए. किसी ने नाक, किसी ने अपने लिप्स, किसी ने बॉडी के और शेप को बहुत एडिट किया है. तो हमारे मुल्क में इतना नहीं है इतना एडिट.
6: आई डोंट थिंक इसको आप ये कह सकते हैं कि ये वहाँ पर इतना नहीं है और यहाँ पर पॉपुलर है फॉर अ रीजन. बिकॉज अगर आप देखेंगे यूके यूएस में भी ये ज्यादा पॉपुलर है. तो जहाँ पर भी ज्यादा डिमांड है या फिर मुझे लगता है जहाँ पर पीपल आर थिंकिंग कि देयर फेस इज देयर ओनली वे ऑफ अर्निंग, जो कि एक्चुअली में है कि उनको लाइमलाइट में रहना, उनको उनकी लाइमलाइट ही वो है.
8: देयर आर लॉट ऑफ पीपल जो बहुत कोशिश करते हैं वेट लूज करने की और फिर जब नहीं हेल्प होता तो व्हाई नॉट गो फॉर दिस. अक्सर लोग जो नहीं मानते उनको फिर तसव्वुर किया जाता है दीज आर लेजी पीपल, इनसे वैसे तो होता नहीं है, दे आर यू नो फेलियर्स. अब फिलर्स और बोटॉक्स के बारे में लोग बात आम करना शुरू हो गए हैं. पर्सनली आई हैव नो इश्यू. अगर वो अपनी सर्जरी भी कराना चाहते हैं इट्स देम कि वो शीशे में देख के अगर अपने लिए खुश नहीं है और वो करना चाहते हैं तो लेट देम.
4: मैं इफ़त आपकी राय की बिल्कुल इज्जत करती हूँ. जब आपने कहा वो करवाना चाहे वो ओपन है इस चीज के लिए, लेकिन क्या हम ऐसे मुल्कों से नहीं आते हैं जहाँ हम लगातार ये सुनते हुए बड़े हुए, अरे वो तो काली है उसकी शादी कैसे होगी, अरे वो तो बहुत मोटी है उसके रिश्ते बहुत मुश्किल से मिलेंगे.
8: मेरा नहीं ख्याल कि हमारी सोसाइटी की प्रॉब्लम है. आई थिंक इट्स वर्ल्ड ओवर अनफॉर्चुनेटली अच्छा नहीं है, पर हकीकत यही है और हम सबको मालूम है. ऐसा भी नहीं है कि फिर सामने लोगों की शादियां नहीं होती, हमारी भी हुई है, सबकी हो भी जाती है. आई एम फ्रॉम दैट स्कूल जहां अगर मेरी बेटी मोटी हो रही होगी ना तो मैं उसको जरूर कहूंगी कि एक्सरसाइज करो बेटा, कंट्रोल करो. मैं दुनिया को नहीं कहूंगी कि आजकल ये पॉलिटिकली इनकरेक्ट है. आपको एक मुनासिब वेट पे होना चाहिए. आई एम नॉट सेइंग कि आपको 36, 22, 36 नहीं, पर मुनासिब.
4: औरतों की जब हेल्थ की बात आती है, रिसर्च की, PCOD, ब्रेस्ट कैंसर, इनमें रिसर्च बिल्कुल कम नहीं होती, बहुत कम होती है, पैसे बहुत कम लगते हैं. लेकिन जैसे ही मोटापा कम करने की आती है, रिसर्च

0: दवाइयाँ धड़ाधड़ मिलने लगती हैं. डॉक्टर नंदिनी, आपका जवाब
1: इस पर, मार्केट है ना इसकी,
0: एग्जैक्टली, और मार्केट बनी क्यों इफ़त, क्योंकि नीड क्रिएट की गई कि आपको पतला होना है, आपको ऐसा ही दिखना है. एक रिसर्च है करीब 25,000 लोगों पर की गई, और अमेरिका में, क्योंकि वहां रिसर्च अभी भी हो रही है, पैसे लग रहे हैं वहां पर, जो लोगों ने खुद ही ओजेम्पिक के डोजेस लिए उसमें 100% कौन थी, लड़कियां, औरतें भी नहीं, यंग लड़कियां थी जो बिना किसी सुपरविजन के ओजेम्पिक की ओर दौड़ रही हैं, क्योंकि उन्हें किसके जैसा दिखना, उन्हें बेला हदीद, जीजी हदीद की तरफ की तरह दिखना है. लेकिन मैं अपनी बात को यही रोकती हूँ डॉक्टर नंदिनी, क्योंकि इफ़त ने बहुत सारी मेडिकल पर्सपेक्टिव से जरूरी बातें की, आप इस पर क्या कहेंगी?
2: मैं खुद जब मेडिकल कॉलेज में थी तो आई वॉज ओवरवेट, अगर मैं आपको बताऊँ तो आई वॉज 118 kgs एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, जो कि मेरे लिए बहुत ही बड़ा एक ऐसा था कि मैं लूप में अटक चुकी हूँ कि कहाँ से शुरू करना है. तो मुझे भी था कि अब मुझे वजन कम करना है, फिर मैं शादी करूंगी, फिर मैं सेटल होना है. वो जो आप कॉन्स्टेंट फेलियर्स होते हैं, जब आप 5-6 kilo कम करते हो, फिर से आप गेन बैक कर लेते हो, फिर से आप गेन करते हो, फिर आप, तो इस लूप में मैं अटकी हुई थी काफी सालों से. टुक मी 6 years टू रीच माय आइडियल वेट. एंड जब मैं अब 70 kgs की हो गई हूँ अकॉर्डिंग टू माय हाइट, तो मुझे लगता है कि अब मैं शादी कर सकती हूँ, लेकिन अभी भी उसके बाद भी शादी नहीं हुई.
0: लेकिन पता है मुझे क्या नजर आ रहा है किरण, अगर हमारे घरों में पता चले, जो लोग अफोर्ड कर सकते, क्योंकि इंडिया में तो एक डोज काफी सस्ता हो गया है फरवरी के बाद से, ऐसे कीमतें गिरी हैं ऐसे दवाइयों की, अरे पतला होने की दवाई आ गई आजकल, उसको बोलो वो फलाने की लड़की
1: मोटी. पेटेंट भी आई थिंक ओजेम्पिक का बाउच हो गया पाकिस्तान में भी. आई मीन आई एम सॉरी, देयर वाज अ टाइम दे वर टेकिंग कोकेन टू गेट स्लिम, तो स्लिम होने की नाजायज चीजें तो हमेशा होती ही रहती हैं.
0: हमारे पास लोगों के बहुत सारे सवाल हैं, हम उनकी तरफ बढ़ेंगे, लेकिन इफ़त ने जहां अपनी बात खत्म की है, हम उस पर आगे बात करेंगे.
3: आई वुड आस्क दैट व्हाई ओनली वुमेन आर एक्सपेक्टेड टू चेंज एंड नॉट मेन, लाइक इफ अ मैन इज आउट ऑफ शेप, एज अ वुमन आई ऑल्सो वॉन्ट माई हस्बैंड टू लुक गुड, व्हाई ओनली वी चेंज, व्हाई कांट दे चेंज?
4: ये इस सवाल का जवाब मुझे लग रहा है कि इफ़त ने बड़े अच्छे तरीके से,
1: हाउ मेनी मेन आर टेकिंग दिस.
0: बिल्कुल इफ़त, लेकिन मुझे लग रहा है
1: ओवरवेट मेन के लिए तो और भी प्रॉब्लमैटिक है, बिकॉज़ देयर यू नो इंटीमेसी भी उनकी बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज हो जाती है विद वाइफ्स. मर्दों की एक नेचर भी होती है कि वो जरा लेजी होते हैं, छाड़ मेनू क्या, मुझे क्या जरूरत है. आई मीन दे हैव टू रियलाइज उनको भी जरूरत है, जितनी अट्रैक्टिव औरत उनको चाहिए होती है उतना ही अट्रैक्टिव मर्द औरत को भी चाहिए होता है.
0: जो एक्सपेक्टेशंस है, जो दबाव है, वो कहीं कई गुना ज्यादा औरतों पर है, लड़कियों पर है, मर्दों पर नहीं है. हमें इस बात को एक्सेप्ट करना होगा. और ये शायद इफ़त, आप इतनी बड़ी आर्टिस्ट रही हैं, आपने अपने करियर में फेस किया होगा. डॉक्टर नंदिनी, आप अभी जो केसेस देख रही हैं, आप उसमें ये महसूस करती होंगी, नहीं करती हैं तो मैं आज यहाँ से बहुत खुश होकर जाऊंगी.
2: मैं आपको बता दूं, मेरे पर बहुत मेल्स हैं, आई हैव यंग बॉयज हु आर गेटिंग मैरिड, मैंने स्टोरीज की है ऑन यंग फीमेल्स, और मेरे पास फीमेल्स डेफिनेटली फीमेल्स का प्रोपोर्शन मेल्स से ज्यादा है, लेकिन मेरे पास उतने ही लड़के भी हैं जो जिनका शादी है दिसंबर में या अगले साल मार्च में, एंड दे हैव स्टार्टेड देयर जर्नी ऑन वेट लॉस. एंड स्पेशली जब से मुंडारो या ओलंपिक और ज्यादा पॉपुलर हुआ है, तब से और ज्यादा क्वेरीज आने लगी हैं फॉर ब्राइड्स एंड ग्रूम्स बोथ.
0: लेकिन मैं ये सोच रही थी, जब औरतें माए बनती हैं तो उनके पोस्टपार्टम डिप्रेशन पे उतनी नजर नहीं जाती, जिनके उतने बड़े हुए 15 kilo पे चली जाती है. पीसीओडी पे अभी अभी नाम चेंज हुआ, इतने सालों बाद फाइनली मेडिकल साइंस ने बोला चलो नाम चेंज कर देते हैं, अब इतनी करोड़ों लड़कियों महिलाओं को दिक्कत हो रही है तो थोड़ा पैसा लगा देते हैं रिसर्च पे. उस पर इतनी देर बाद बात हुई, लेकिन पीसीओडी से आपका वजन बढ़ता है, इस पर पता नहीं कितने सालों से चर्चा हो रही. मेरी दिक्कत इस चीज से है कि सारा का सारा मुद्दा, सारी बहस वजन पे आके क्यों रुक जाती है?
4: अपीयरेंस पे कि आप दिखते कैसे हो,
1: इसको एक बीमारी भी समझना है, क्योंकि एक हद से ज्यादा आपका जो वेट, आपकी हाइट और स्ट्रक्चर के मुताबिक चला जाता है तो वो एक बीमारी होती है जिसका इलाज करना होता है.
0: डॉक्टर नंदिनी, आप समझाइए, अगर आपके पास कोई ऐसा इंसान आएगा वेट लॉस ड्रग्स के सजेशन के लिए, जो मेडिकली आपकी नजर में फिट है, बीएमआई उसका सही है, लेकिन वो चाहते हैं कि वो इन ड्रग्स को ले ताकि वो एक सर्टेन लुक्स को हासिल कर सके, आप उनको क्या सजेस्ट करेंगी?
2: मैं मना नहीं करूंगी अगर वो एक प्रॉपर गाइडेड तरीके से इसको लेते हैं. इसलिए जब मैं आपको बोलती हूँ कि मैं GLP-1 कोच हूँ, तो मैं GLP-1 कोच इसलिए हूँ क्योंकि मुझे पता है कि मुझे मिनिमल यूज ऑफ ड्रग के साथ आपको मैक्सिमाइज रिजल्ट

0: कैसे देना है विद योर न्यूट्रिशनल प्लानिंग. तो अगर वो उनकी नीड समझते हुए मुझे लगा कि उनको जरूरत है, इसका पैसे से ताल्लुक नहीं है, लेकिन अगर उन्हें जरूरत है और उनको लगता है कि उनको फिट या अच्छा लगने के लिए अपने कॉन्फिडेंस के लिए अनदर 3 या 4 किलो लूज करने की जरूरत है और वो GLP-1 का सहारा लेना चाहते हैं, तो मैं उनकी वो मदद करना चाहूंगी.
1: GLP-1 हम काफी देर से ये टर्म यूज कर रहे हैं, तो हमारी आम आवाम को या हमें भी ये जानने की जरूरत है कि GLP-1 बेसिकली है क्या.
0: GLP-1 क्या है कि जब आप नॉर्मली हम सबके बॉडी में जब भी हम खाना खाते हैं तो खाना खाने के बाद से हमारी बॉडी एक हार्मोन रिलीज करती है जिसको हम बोलते हैं इंक्रेटिन. इंक्रेटिन जो है वो रिलीज होता है, फिर वो आपकी ब्रेन तक सिग्नल देता है कि मैंने खाना खा लिया है, अब मेरा पेट भर गया है, अब और मत खाओ. लेकिन आपने क्या किया, जब आपने GLP-1 की बात करी तो आपने वो इंजेक्शन बाहर से पहले ही लगा दिया, यानी कि अब आपने खाना खाया हो नहीं खाया हो आपका ब्रेन आपको हमेशा सिग्नल देगा कि आपका पेट भरा हुआ है. तो जब आपका पेट भरा हुआ है तो आप नहीं खाएंगे, जब आप नहीं खाएंगे तो धीरे धीरे आपकी बॉडी आपका खुद का फैट इस्तेमाल करना शुरू कर देगी एंड यू स्टार्ट लूजिंग वेट.
2: शुक्रिया डॉक्टर नंदिनी. एंड मैं समझ सकती हूँ डॉक्टर आपके पास बहुत सारे सवाल हैं, हमारे पास भी बहुत सारे सवाल हैं, भारत और पाकिस्तान के लोगों के पास भी बहुत सारे सवाल हैं, तो हम उनको प्राथमिकता देते हैं, प्रायोरिटी देते हैं और अगले सवाल की ओर चलते हैं.
3: जो ये लोग फिलर्स और ये जो सर्जरी ब्यूटी सर्जरीज करवा रहे हैं, सो उसके बाद उनको वो कॉन्फिडेंस मिल रहा है जो उनको पहले अपनी नेचुरल ब्यूटी में मिलता था.
2: अब ये वो सवाल आया जिसका मैं इंतजार कर रही थी. हमने बहुत सारे मेडिकल टर्म्स पे बात कर ली, एक दूसरे से सलाहें भी ले ली, लेकिन क्या खुद को बदलने से जो इन्होंने पूछा वो कॉन्फिडेंस आ जाता है?
4: या मेरे में तो आता है, इफ आई गेन 1-2 किलो भी अगर मैं, बिकॉज़ आई हैव बीन स्लिम दिस साइज ऑल माय लाइफ, सो मेरा आई एम अ लकी पर्सन. लेकिन विद एज विद मेनोपॉज आपको इश्यूज आते हैं, आप थोड़ा सा भी ज्यादा ओवर ईट करते हो. मैंने अभी तक ये ट्राई नहीं किया, लेकिन अगर डॉक्टर नंदिनी का मुझे फोन नंबर आप भेज देंगे तो मैं इनसे सलाह करके जो 5-6 किलो अभी भी एक्स्ट्रा चढ़ता है, आई लूज इट, ऑटोमेटिकली आपको अपना आप अच्छा लगना शुरू हो जाता है. कोई लेजर कराना, कोई हेयर रिमूव कराना, स्किन के लिए कुछ कराना, इवन बोटॉक्स, पर्सनल चॉइस है, आई डोंट माइंड इट. एंड यस, मैं जरा से बेहतर लगने लगती हूँ, मैं जरा सी फ्रेश लगती हूँ, तो आई फील मोर कॉन्फिडेंट. आई बी वेरी ऑनेस्ट अबाउट.
2: शुक्रिया इस ईमानदार जवाब के लिए फत. डॉक्टर नंदिनी, हमने कॉन्फिडेंस की बात की, लेकिन एक बहुत जरूरी सवाल हमसे रह गया है, वो ये कि एक फैट लॉस ड्रग आया था 90s में, फेनपेन, और 7 साल बाद उस दवा को वापस ले लिया गया, क्योंकि 7 साल बाद जाके पता चला कि वो हार्ट डिजीजेस पैदा कर रहा था लोगों में. ओजेम्पिक पे या जैसी दवाइयों पर क्या ये रिसर्च पूरी हो चुकी है कि लोग इतनी आसानी से इसे ले रहे हैं?
0: कि US में जब ओजेम्पिक लॉन्च हुआ था 2017 की बात है, 2017 में आने के बाद वो काफी समय लगा उसे इतना पॉपुलर होने में UK US में वेट लॉस के लिए, यानी कि आप मान लीजिए 2024 में जाके ये काम हुआ, तो 7 साल ऑलरेडी हो चुके हैं और इतनी रिसर्च हो चुकी है. एंड प्लस वो ये भी जानते थे कि पहले वाले पेन के साथ जो भी उन्होंने जो भी ड्रग आई थी उसके बाद उन्होंने ये देखा है कि क्या क्या नुकसान होते हैं, और इसीलिए अभी से वो काफी चीजों के लिए उन्होंने एक चेकलिस्ट हमें दे रखी है कि इन इन केसेस में बिल्कुल नहीं करना.
4: एंड आई वॉन्ट टू से देयर कि हम जेनेटिकली अदर औरत की जो अट्रैक्शन है उसमें चाइल्ड बेरिंग बॉडी आपको पता है कि सबसे इम्पोर्टेंट होती है, यानी कि सबसे हेल्दी बॉडी जो होती है. सो आपके अपने स्ट्रक्चर के मुताबिक जो आपका हेल्दीएस्ट वेट है, दैट शुड बी योर गोल. और मैं ओल्ड स्कूल से ताल्लुक रखती हूँ, जहाँ मुझे पॉलिटिकली करेक्ट करना नहीं, बातें नहीं करनी आती, तो मैं तो बहुत मोटे को मोटा ही कहूंगी और बहुत पतले को सूखा ही कहूंगी दिल में. आजकल मैं मुंह पे नहीं कह सकती, और अगर कोई मुझसे इसका मशवरा मांगे तो मैं उसको जरूर कहूंगी कि गो टू योर परफेक्ट वेट बाय हुक और बाय क्रुक. आई वांट के दुनिया में हर कोई हेल्दी हो और अपने फुलेस्ट पे जी के जाए.
2: जी बिल्कुल, और हमारी जिम्मेदारी है कि हम ऐसी बात करें जिससे जिन्हें सुनकर कोई खुद को जज ना करे कि अरे देखो आओ बात करें, मैं तो ऐसी बातें कर रहे थे. मेरा अभी भी मानना है मेडिकली बहुत जिम्मेदार बातें की हमने. किरण, इफ़त, नंदिनी, आपसे बातें करके बहुत मजा आया, लेकिन जितने भी वेट लॉसेस ड्रग्स हैं उनका ये एम जरूर रहा, डायबिटीज ठीक करते हैं, ओबीज लोगों को ठीक करते हैं, लेकिन चलो लड़कियों और औरतों को भी पतला कर देते हैं ताकि वो परफेक्ट दिखें. इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते, उस परफेक्शन की दौड़ में मार्केट एक बहुत बड़ा प्लेयर है, इंडियन मार्केट